लिखता हूँ पहम सलाम लिखता हूँ, दुरूद लिखता हूँ पहम सलाम लिखता हूँ, हर एक नबी का रसूलो इमाम लिखता हूँ, हर एक नबी का रसूलो इमाम लिखता हूँ, किसी को भी किसी कीमत पे न दूंगा कभी, किसी को भी किसी कीमत पे न दूंगा कभी, मैं जिस कलम से मोहम्मद

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306।

0: जी जान तारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस। तीन की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आ सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द सन डैमेज और गार स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।

0: हलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है एनपीएस तीन की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 03013992836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

साईं जा अॼु सालगिरह जो ॾींहुं आहे असदुल्ला जूणे जो, उन जी अॼु बर्थडे आहे, सालगिरह आहे, ऐं असां पाण उन खे हैप्पी बर्थडे चऊं पिया, ऐं असां हुन खे सालगिरह जूं लख लख मुबारकूं ॾियूं पिया। असांजी तरफ़ां दुआ आहे त ही साल असदुल्ला जे लाइ ज़िंदगी में ख़ुशियुनि जो साल हुजनि, ऐं असां दुआ पिया कयूं त गुलाब जे गुल जीअं खिलंदा मुस्करंदा रहनि, ऐं असदुल्ला जा समूरा ख़्वाब पूरा थियनि, ऐं उन्हनि जे वजूद सां असांजूं रौनकूं आहिनि, ऐं अलाह साईं हमेशह उनखे आबाद रखे, शाद रखे, ऐं हमेशह असदुल्ला खिलंदो मुस्कराईंदो रहे। आमीन। ऐं बर्थडे जे हवाले सां ख़ूबसूरत नगमो आहे असदुल्ला जे नाम।

साईं जा सावल मीराली जो गज़ल अवां जे ना मुर्की नेण मिलाए दिल खणी वियो आ मुर्की नेण मिलाए दिल खणी वियो आ ज़ोरीअ कीअं अलाए दिल खणी वियो आ वेंजी सिंजी सरस करे सिंगार पिरी वेस गुलाबी पाए दिल खणी वियो आ माणा टाणा अंगल आरा नाज़ निहारा वेतर पाणो वणाए दिल खणी वियो आ घोरे नज़रुनि सां निहारी मुर्की मारी वई घूरे नज़रुनि सां निहारी मुर्की मारी शोखीअ सां शर्माए दिल खणी वियो आं सुरंदे सुरंदे पाण अची भर में वेही कुख में चूंडड़ी पाए दिल खणी वियो आं तुंहिंजे कयल कचहरी मूंखां नथी विसरे गुणनि भरियो ॻाल्हाए दिल खणी वियो आं सीने में जो ॾिठमि त सांवल दिल कान्हे हथ हणी कयमि हाए दिल खणी वियो आं।

जी हाँ, समय प्रोग्राम रोशन सुबह बुध पे GFM 88 जे नेटवर्क ता इन वक्त न्यूज ब्रेक ए कमर्शियल ब्रेक की तरफ हलूँ पा। वापस इंदासी कदें भी न वनजो वरी अवां सा इंदासी गर थींदासी अवां के वरी सवाल भी नोट कराइंदासीं अवां के चूंड मौसीकी भी जरूर बुधाइंदासीं।

दबाव विझण लाइ सहकार करण ते तयार आहे। अमेरिका जंग दौरान आम शहरनि खे निशानो नाहे बणाईंदो। ईरान में शादी तकरीब ते हमले जे ख़बरुनि जे हवाले सां सेनेट कामकाज शुरू करे छॾी आहे।

0: विरांगो नथा चाहिन तैवान मां भॼी छो विया। नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो टीवी प्रोग्रामनि ज़रिए न पर असेंबली में थियणो आहे। ख़बर पइजी वई त कहिड़ा माण्हू सिंध जे विरांगे जे ख़िलाफ़ आहिनि ऐं कंहिंजो बिटो मयार आहे। टीवी विकिणे बंदूक खणण जी ॻाल्हि कंदड़ लीडर ख़बर नाहे हाणे किथे वेठो आहे। सिंध जे वहदत ते बिटो मयार क़बूल नथो करे सघे। ख़बरदार कयूं था त पुलिस असेंबली में सिंध जे विरांगे जी ॻाल्हि नथी करे सघे। वरी वज़ीर सैद मुराद अली शाह जो सिंध असेंबलीअ में ख़िताब। वरी वज़ीर चयो त लाहौर में वफ़ाकी वज़ीर निज़ाम तबाह थियण जो चयो। बिज़नेसमैननि ताड़ियूं वॼायूं, छा हाणे अरबपति बिज़नेसमैन नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो कंदा? समुझ में न पियो अचे सिंध असेंबलीअ में मौजूद मुबैना पी टी आर वारा हिदायतूं कंहिं खां वठी रहिया आहिनि। पी टी आर वारा असांजे साम्हूं अची चवंदा हुआ उहे सिंध जे विरांगे जे ख़िलाफ़
1: आहिनि। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03003385।

0: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 315 109, 03000 315 09।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03008569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

साईं मुंहिंजा कुदरत पारां ज़बान जहिड़ो बेबाह तोहफ़ो अता कयो आहे ॻाल्हाइण लाइ ऐं कननि जो तोहफ़ो मिलियो त ॿुधो ऐं सुठियुनि ॻाल्हियुनि ते अमल करियो। पराई पचार खे हिकु कन खां ॿुधी ॿिए कन मां कढी छॾियो। अखियुनि जहिड़ी नेमत ॾिनई त अखियूं खोले ॾिसो, सच खे सुञाणो, सूंहं जा साथी बणिजो, कुदरत जे हुसन जी वाखाण करियो। अखियूं जेकी ॾिसण सां गॾु ॻाल्हाईंदियूं बि आहिनि, अखियूं जॾहिं ॻाल्हाईंदियूं आहिनि तॾहिं अखियूं ई उहे ॻाल्हियूं सम्झंदियूं बि आहिनि। अखियूं प्यार मोहबत जा सनिया ॾियण लाइ बि ॻाल्हाईंदियूं आहिनि त कावड़ ऐं किरोध जो बेज़िहार करे वठंदियूं आहिनि, ऐं कॾहिं कॾहिं त लफ़्ज़नि जा तीर बि वसाईंदियूं आहिनि। अखियुनि जूं सदाईं सम्झ में न ईंदड़ ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि। तॾहिं त छा साईं चयो आहे त अखियुनि खे आहिनि अजब जहिड़ियूं आदतूं, सूर पराए साथ जा वञो वहां आहिनि, उते लहूं लाइन जिते हाजत नाहे हथियार जी।

जी हा समय जा प्रोग्राम रोशन सुबह वा बुध पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क ता जेमे सखर लाड़काणो मीरपुर खास मोरो मेहरापुर सकरंड मटियारी ए मातली स्टेशन ता असां खे असां हिन हफ़्ते जो सवाल नोट कराईंदासीं। काफ़ी दोस्तनि सवाल नाहे ॿुधो ऐं मां ॿ दफ़ा सवाल नोट करायो आहे पर दोस्तनि न ॿुधो आहे जो किथे स्टेशन ते कमर्शल जे करे थोरी अॻे पोइ थी वेंदी आहे। सवाल आहे त जेके चैरिटी यानि खैराती कम आहिनि उन्हनि जो आलमी ॾींहुं कॾहिं मल्हायो वेंदो आहे। जी साईं मुंहिंजा खैराती कम यानि चैरिटी के काफ़ी हॉस्पिटलूं खैराती हूंदियूं आहिनि, किथे लेबॉरेटरियूं खैराती हूंदियूं आहिनि ऐं काफ़ी अहिड़ा किथे स्कूल हूंदा आहिनि जेके उहे खैराती हूंदा आहिनि, चैरिटी हूंदा आहिनि। बहरहाल काफ़ी शयूं आहिनि चैरिटी यानि खैराती कमनि जो आलमी ॾींहुं कॾहिं मल्हायो वेंदो आहे। तव्हां असांखे SMS ज़रिए बि ॿुधाए सघो था, तव्हां असांखे फेसबुक ते बि नोट कराए सघो था, तव्हां असांखे मोबाइल नंबर ते बि तव्हां असांखे सवाल जो सही जवाबु ॿुधाए सघो था।

जी असीं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह जारी ऐं सारी आहे तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु यारहें वॻे ताईं हिन वक़्तु हलूं पिया कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं असां सां गॾिजो

0: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000002734 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569
2: हथे गुल मेंदी पेरे गुल मेंदी
3: आई अदी अज त डाडी खुश पे नजर अची
4: छो न खुश थिया अदी जदे खा मुजे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार बीणी थी वई आहे ए हाणे पैसा भी बीणा था अचन ही दिस सोनियो चोणियो
3: मां भी वही चवा उनके ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए
5: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर का नालो वठी खरीद करयो
6: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई सोम

0: वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़ बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
3: न अदा
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी भेट हलंदी
4: हाँ अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836
1: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1565-724
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

जी साईं, मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में सवाल जो सही जवाब जिन में दोस्त ॾिनो, ऐं सवाल जो सही जवाबु हो त 5 सेप्टेंबर ते ख़ैराती कमनि वारो आलमी ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे, याने चैरिटी कम जेके बि आहिनि, ख़ैराती कम जेके बि आहिनि, उनजो आलमी ॾींहुं 5 सेप्टेंबर ते मल्हायो वेंदो आहे। उनजो सही जवाबु इहो, ऐं जिन दोस्तनि असांखे प्रोग्राम में सवालनि जा सही जवाब ॾिना उनजा नाला बि अव्हां ताईं पहुचाईंदा हलंदासीं। हेमत अली चांडियो, ज़ुबैर अली सुल्तान चांडियो, ॻोठु लश्करी चांडियो लॻे मही मकोलनि खां, आसिफ अली कोरकाणी ॻोठु जबल खान कोरकाणी खां, असदुल्ला जुणे जो, हाफिज़ तौकीर रहमान जुणे जो, बेबी अजवा फातिमा ऐं बेबी अबिया फातिमा ॻोठु ठुल जुणे जो खां, नज़ीर अहमद खोसो सोबतपुर बलोचिस्तान खां, यासमीन मलक मीरपुर ख़ासि खां, रुस्तम अली पंवर ॻोठु पुनू ख़ान पंवर सेवण खां, अज़ीज़ सोलंगी भुट्टो सोलंगी नूरो सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां, इक़बाल लाशारी इक़बाल अहमद खूहारो लाड़काणे खां, ऐं मोहम्मद शरीफ़ छुटो दरेजी बलोचिस्तान खां, ऐं ख़ालिक लाशारी झलोरी मीरपुर ख़ासि खां, अलह बचायो नुहाणी शाहपुर दरपुर खां, दिलीप कुमार मेंगवाड़ पाबो वेरो खां, ऐं महरम अली जतोई ॻोठु आगा ख़ान जतोई खां, क़ुर्बान अली ख़ासखेली झंडो मरी खां, हाफिज़ मोहम्मद अमीन बारी जो गंबट लग खोड़ा खां, अल्ताफ़ गाढ़ी बलोच कराची खां, मोहम्मद ख़ान कुंभार जमाल कुंभार मोहम्मद अली कुंभार हालेपोटा स्टाप मीरपुर ख़ासि खां, रेहाना ख़ान भखर खां, नादर अली कंगो ॻोठु कंगन खां, ग़ुलाम मुर्तज़ा लुंड मीरपुर ख़ासि खां, हाफिज़ नईमुल्लाह काज़ी अमीनुल्लाह काज़ी पनिया किल खां। दोस्तनि जी वॾी महिरबानी, ऐं जिन दोस्तनि असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया उन्हनि जा लख कुर्ब। ॻोठु मोलिन माशी लॻे वॾनि मरनि खां, ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख़्तार अली सोलंगी, ज़हीर अबा सोलंगी, नंढड़ो वफ़ा हुसैन सोलंगी, ॻोठु कंगन खां गुलाब ख़ान कुंभर, शोएब अली ग़ुलाम रसूल कुंभर, ॻोठु अहमद ख़ान लाशारी लॻे धूणनि खां, नियाज़ अली लाशारी, नंढड़ो शाहज़ेब लाशारी, ॻोठु हसू जतोनि खां, मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद ऐं नसरुल्ला जतोई, ॻोठु मोहम्मद कासिम चांडियो खां, अली अकबर चांडियो, मोहसिन अकबर चांडियो, अहसन अकबर, फहद अकबर, अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो, ॻोठु छुटो मक्सी लॻे कंगन खां, सिकंदर अली मक्सी, अकबर ख़ान मक्सी, नारा स्टाप सखर लॻे सब्ज़ी मंडी खां, एजाज़ अली जुणे जो, मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जुणे जो, यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां, फ़ौजी इरशाद अली महेसर, फ़क़ीर एजाज़ अली कलोड़ो, डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो, माजिद अली जतोई। समिन दोस्तनि जी वॾी महिरबानी, ऐं हीउ नगमो सभिनी दोस्तनि जे नाम।

जिया समेना समीना कवल जे इनया नगमे ते प्रोग्राम रोशन सुबह जो वक्त पाजे पे पाजे पुजानी ते हयाती बखैर वसा मुलाकात जरूर थी तेसी तई पाजे मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो के दींदा इज्जत अल्लाह निगाह।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मंजूर करे वरतो सिंध असेंबली में नवन सूबन इंतजामी यूनिट्स बाबत रिते बहस मुकमल थे बाद पीपल्स पार्टी MPA निसार खोड़ो सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ ठहराव पेश कयो। जेको ऐवान जकरा मंजूर करे वरतो ठहराव में चयो वियो आहे त मुल्क में नवन सूबन इंतजामी यूनिट के हवाले सां नए सिर बहस शुरू थी वियो आहे। अड़ियुनि तजवीज़न जो असर सिंध ते पइजी सघे थो। सिंध एक तारीखी तहजीबी ए आइनी सुणप रखंदड़ खितो आहे। सिंध की सुणप इलाकाई तसलसल सदियों पुराणो आहे। सिंध अणटुट सूबे की हैसियत सां पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कई हुई। ही ऐवान एक भेरो वरी सिंध के इम्कानी विरांगे के सख्ती सां रद्द करे थो। निसार अहमद खोड़े पारां पेश कयल ठहराव के मतन में चयो वियो आहे त सिंध असेंबली 6 भेरा ठहराव मंजूर करे सिंध के इम्कानी विरांगे के रद्द करे चुकी आहे। आइन में वाज़े आहे त सूबे जूं हदूं तब्दील करण लाइ लागापियल असेंबलीअ मां ठहराव मंजूर थियण ज़रूरी आहे। सिंध मां कंहिं बि ज़िले डिवीज़न या इलाइक़े खे धार करण या वफ़ाक़ी निज़ाम जे मातहत रखण खे रद्द करे थो। सूबाई असेंबली सिंध जे हदनि में कंहिं बि क़िस्म जी तब्दील जी इजाज़त नथी ॾे। ऐवान वाज़े लफ़्ज़नि में ऐलान करे थो त सिंध हिकु आहे हमेशा हिकु रहंदी। एमक्यूएम वारा सिंध जो विरांगो नथा चाहिनि त ऐवान मां भॼी छो विया। नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो टीवी प्रोग्रामनि ज़रिए न पर असेंबली में थियणो आहे। ख़बर पइजी वई त कहिड़ा माण्हू सिंध जे विरांगे जे ख़िलाफ़ आहिनि ऐं कंहिंजो बितो मयार आहे। टीवी विकणी बंदूक खणण जी ॻाल्हि कंदड़ लीडर ख़बर नाहे हाणे किथे वेठो आहे। सिंध जी वहदत ते बिठो मयार क़बूल नथो करे सघिजे। ख़बरदार करियूं था त क़ौमी असेंबली बि सिंध जे विरांगे जी ॻाल्हि नथी करे सघे। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जो सिंध असेंबलीअ में ख़िताब। वॾे वज़ीर चयो आहे त लाहौर में वफ़ाक़ी वज़ीर निज़ाम तबाह थियण जो चयो त बिज़नेसमैननि ताड़ियूं वॼायूं। छा हाणे अरबपति बिज़नेसमैन नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो कंदा? समुझ में न पियो अचे त सिंध असेंबलीअ में मौजूदु मुबैना PTV वारा हिदायतूं कंहिंखां वठी रहिया आहिनि। PTI वारा असांजे साम्हूं अची चवंदा हुआ उहे सिंध जे विरांगे जे ख़िलाफ़ आहिनि। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एडमिटेल खे फ़ौज लाहौर वज़ीर नामज़द करे छॾियो। एडमिटेल डिस्कोल जी जॻहि ते ज़िमेवारियूं संभालींदो। डिस्कोल बजाउ वारे वज़ीर सां इख़्तिलाफ़नि बाद पंहिंजे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई हुई। एडमिटेल अमेरिकी फ़ौज बाबति सिविल मामलनि जो ज़िमेवार थी। गाजी खावड़ वेझो मीर वाजियाबाद घरनि जो पाणीअ कोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। आबादगारनि पारां पोछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। मुज़ाहिरनि चयो आहे त मीरवा में पाणीअ जी सख़्त खोट आहे। पोछड़ में फसल सुकी रहिया आहिनि। आपाशी खातो पाणी विकिरो करे रहियो आहे। पोछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे। उबावड़ो भरिसां रेणी केनाल मां औरत जो हथ पेर ॿधल लाश हथायो आहे। सुञाणप न थी। पुलिस जो चवणु आहे त औरत जे जिस्म ते तशदुद जा बि निशान आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। अहमदपुर वेझो चांडिया बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो लठियूं ऐं ॾाटा लॻण सबबि ॿिन्ही धुरियुनि जे चइनि औरतनि समेत 12 ॼणा ज़ख़्मी। ॿिनि ॼणनि जी हालति गंभीर जोगी। ॻोठ फतेह अली चांडियो में चांडिया बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में घिटीअ जे मामले तां झेड़ो थियो। झेड़े दौरान ॿिन्ही धुरियुनि जे चइनि औरतनि समेत 12 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। इस्पताल मलीर सिटी जे इलाइक़े गाज़ी बिरोही ॻोठ जे मलीर मॉडल सेकेंडरी स्कूल जी इमारत ते कब्ज़ो बरक़रार। सवे शागिर्दनि ऐं शागिर्दनि एहतजाजी रोड ते असेंबली करे रोड ते पढ़ण लॻा। उस्तादनि ऐं शागिर्दनि पारां स्कूल तां कब्ज़ो ख़तमु कराइण जो मुतालबो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटो से पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
5: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109।
6: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 03000-3385-69।
4: असली चीजान चारों मसालों जी सुन्याण पर ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डीसी करे खरीद कंदा। जी जान चारों मसालो, ढोरे जो हाजमो दुरुस्त। जी जान चारों मसालो, ढोरे सेहतमंद। जी जान चारों मसालो, जी जान चारों मसालो, हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
7: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
8: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तियाब आई।
7: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
8: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
9: अस्सलाम वालेकुम अदा।
10: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
9: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
10: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
9: न अदा।
7: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
9: मुझे दुकान जी बेड रंदी।
10: हां दा कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
9: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
10: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
11: 03013992836।
12: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मौजूद हूँ दो ट खाते जो इजलास पीपल्स बस सर्विस डबल डेकर बस सर्विस जल्द शुरू कई वेंदी। शर्जील मेमण चयो त नव रूट्स ते बस सर्विस लाइ समूरा इंतज़ाम मुकमल कया वञनि। पीपल्स बस सर्विस जो दायरो वधाइण जो मक़सदु आवाम खे बहितर ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत फराहम करण आहे। गाजी खावर वेझो मीरवा जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। आबादगारनि पारां पोछण ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। मुज़ाहिरनि चयो त मीरवा में पाणीअ जी सख़्त खोट आहे। पोछण में फसल सुकी रहिया आहिनि। आपाशी खातो पाणी विकिरो करे रहियो आहे। पोछण ताईं पाणी पहुचायो वञे। उबावड़ो भरसां रेणी केनाल मां औरत जो हथ पेर बधल लाश हथ सुञाणप न थी सघी। पुलिस जो चवण आहे त औरत जे जिस्म ते तशद्दुद जा बि निशान आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। अहमदपुर वेझो चांडिया बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो लठियूं ऐं डाटा लॻण सबबि ॿिन्ही धुरियुनि जे चइनि औरतनि समेत 12 ॼणा ज़ख़्मी। ॿिनि ॼणनि जी हालत घंटी जोगी। गोट फतेह अली चांडियो में चांडिया बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में घिटीअ जे मामले तां झेड़ो थियो। झेड़े दौरान ॿिन्ही धुरियुनि जे चइनि औरतनि समेत 12 ॼणा ज़ख़्मी थिया। इस्पताल मुंतकिल। मलीर सिटी जे इलाइक़े गाज़ी बिरोही ॻोठ जे मलीर मॉडल सेकेंडरी स्कूल जी इमारत ते कब्ज़ो बरक़रार। सवे शागिर्दनि ऐं शागिर्दाणी नतजाजनि रोड ते असेंबली करे रोड ते ई पढ़ण लॻा। उस्तादनि ऐं शागिर्दनि पारां स्कूल तां कब्ज़ो ख़तम कराइण जो मुतालबो।

0: हिकार उंझर जी कोयल फौजिया सुमरो जे विछोड़े के चौवीह वरिया वहामी वया संदस गायल गीतन जो अज भी हजारे दिलन ते राज बरकरार।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306-1623-793।

0: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109, 03000 3105109।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03200 1800003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: सोनी, अज त डाढी खुश थी लगे।
2: हा साईं, गाल भी एड़ी आहे।
1: भला मुखे भी बुधाए केड़ी गाल आहे।
2: चाचे, जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
1: छा छा?
2: उहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। ही चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे थो, ढोर सेहतमंद थेन ता, गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे थो।
1: वाह सोनी वाह, वाह जी गाल बुधाई। पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
2: साईं, रेडीए थे ता बुधाइन। बुध अजी वठी अज।
1: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
2: हा साईं हा।
3: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
6: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
7: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 02424601000।
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
8: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

पजरन पान में वेठु वेचारियो रोन रणन की नकी जो इश्क आजारियो अयूब जी अंदर में बिरहल बीमारियो तालिब मौला तदही सूत्र के प्यारियो ये मोहब्बत जो

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब कंदे नाणे वारे वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब चयो आहे त निजकारी वारे अमल खे शफाफ बणायो वियो आहे। मुआशी सुधारनि जो अमल बि तेज़ीअ सां जारी आहे। ईरान खिलाफ़ जंग जो फ़ैसिलो दुरुस्त आहे। जंग में अमेरिका पंहिंजी बरतरी बि साबित करे छॾी आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिका वटि हथियारनि जो वॾो ज़खीरो मौजूदु आहे। यूक्रेन जंग ख़त्म थियण जो ख़्वाहिशमंद आहियां। ई आहे इंसाननि ख़िलाफ़ त रोकण जो को न को रस्तो मौजूदु हूंदो। इसराइली वज़ीर आज़म ईरान ते ॿीहर हमला करण जी धमकी ॾेई छॾी। फ़ौजियुनि खे ख़िताब कंदे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चयो आहे त ईरानी हुकूमत बका जी जंग विढ़ी रही आहे। जल्द किराइण में कामयाब थींदासीं। पक आहे त ईरानी इस्लामी हुकूमत ख़तम करे छॾींदासीं। असांजी फिज़ाया ईरान ते ॿीहर हमलनि लाइ तयार आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जी सदारत हेठि ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास। पीपल्स बस सर्विस, डबल डेकर बस, ईवी टैक्सी ऐं पिंक स्कूटीज मनसूबनि ते गौर ब्रीफिंग में ॿुधायो। शादात कोट ऐं लाड़काणो रूट ते बस सर्विस जल्द शुरू कई वेंदी। शर्जील मेमण चयो त नवनि रूट्स ते बस सर्विस लाइ समूरा इंतज़ाम मुकमिल कया वञनि। पीपल्स बस सर्विस जो दायरो वधाइण जो मक़सदु अवाम खे बहितर ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत फराहम करणु आहे। सांगड़ भरिसां बोवी आयल फील्ड जे हिकु खूह तेल हथ गैस बि मिलंदी। OGDCL जो चवणु आहे त नए खूह मां रोज़ानो 1000 बैरल तेल निकरंदो। अटकल 1 MMSCF कुदरती गैस जे बि मिलण जो इम्कान आहे। दरियाफ़त थियल तेल ऐं गैस जे मक़ामी पैदावार खे हथी मिलंदी। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां नींगरी ऐं औरत समेत टिनि ॼणनि जा लाश हथ उॿावड़ो भरिसां रेणी केनाल मां औरत जो हथ पेर बदल लाश हथ आयो आहे। सुञाणप नथी सघी। रोड़ी वेझो क़ौमी शाहरा तां बि नौजवान जो लाश मिलियो। सुञाणप नथी सघी। नगर पार्कर वेझो 15 वरनि जी नींगरीअ जो वण में टंगियल लाश हथ आयो आहे। इस्पताल मुंतकिल। गोठ कोया वासण लक्ष्मी धीअ हरी सिंह कोहलीअ जो घर भरिसां बनीअ मां लाश मिलियो आहे। वासण जो चवण आहे त नींगरी कानोड़ीअ जे ॾिण लाइ कपिड़ा न वठी ॾियण ते आपघात कयो आहे। कराची जे वापारी मीर रज़ा केस जी अदालती जांच जारी। अदालती कमीशन SHO गुलिस्तान जोहर कामरान कुरेशीअ खे तलब करे वरितो। हेड मरर खे बि नोटिस जारी। कमीशन पारां ॿिन्ही आफ़िसरनि खे 7 सेप्टेम्बर ते पेश थियण जी हिदायत। मीर रज़ा जो लाश गुलिस्तान जोहर थाणे जी हद मां मिलियो। कराची जे सिंध इंफेक्शन इस्पताल 3 मरीज़नि में एमपॉक्स जी तसदीक करे छॾी। हिकु शकी केस रिपोर्ट। इस्पताल ज़रियनि मूजिबि एमपॉक्स जा वधीक 3 केस ज़ाहिर थिया आहिनि। 3 मरीज़नि जी PCR टेस्ट में एमपॉक्स जी तसदीक थी आहे। सिंध में एमपॉक्स जी तसदीक थियल केसनि जो अंगु 40 थी वियो। गाजी खावड़ वेझो मीरवा जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। आबादगारनि पारां पोछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। मुज़ाहिरनि चयो त मीरवा में पाणीअ जी सख़्त खोट आहे। पोछड़ में फसल सुकी रहिया आहिनि। आपाशी खातो पाणी विकिरो करे रहियो आहे। पोछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे।

0: कारू झर जी कोयल फौजिया सुमरो जे विछोड़े के चौवीह वर वहामी वया संदस गायल गीतन जो अज भी हजारें दिलन ते राज बरकरार।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03003105109।

0: ताईं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर। एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब है जो एड बंद कराने ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94।

0: जा पीउ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध ऐं वठी अच
1: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा
2: हा भाग भरी चंगो थो लगे मा हाणे ही थो वठी अचा
3: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करियो
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीने फास्फोरस की कमी का शिकार है इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
5: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम

आशिक बैठे हों और हाथ बुलंद ना हो, झंडे नहीं तो क्या हुआ। जहाँ सरकार की महफिल सजती है, सरकार तशरीफ लाते हैं। कितनी देर से महफिल जारी और सारी है, खिताब की समाअत फरमाया है, अब मांगने का वक्त है। सरकार की आमद का इस्तकबाल कौन कौन करेगा दीवाना? जिसके हाथ कीमती है वो नीचे रखे, जो समझता है सरकार पे ये जाने कुर्बान है, ये हाथ क्या चीज है। मिलके जरा सरकार की आमद।

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खात्मे लाइ कयो वियो ऑपरेशन दौरान भारतीय सरपरस्तीअ में कम कंदड़ 12 दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। हथियार ऐं बारूदी मवाद हथ कयो वियो। मुश्किल फैसलनि सब मुआशी इस्तेकाम आयो। पाकिस्तान खे ॿीहर उरूज ऐं ज़वाल वारे मुआशी चकर में वञण न ॾींदासीं। इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त मुल्क में सीड़पकारी वधाइण लाइ सीड़पकारनि खे सहूलियतूं ॾेई रहिया आहियूं। मुआशी तरक़ीअ खे जटादार इस्तेकाम तरफ़ वठी वञणो आहे। बुनियादी सुधारनि वारो सिलसिलो बि जारी रखियो वेंदो। निजी शोबे खे मुल्क जे मुआशी क़यादत करण जे क़ाबिल बणायो। ईरान जंग ख़िलाफ़ जो फ़ैसिलो दुरुस्त आहे। जंग में अमेरिका पंहिंजी बरतरी बि साबित करे छॾी आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिका वटि हथियारनि जो वॾो ज़खीरो मौजूदु आहे। यूक्रेन जंग ख़तम थियण जे ख़्वाहिशमंद आहे। ई आहे इंसाननि ख़िलाफ़ वेही त रोकण जो को न को रस्तो मौजूदु हूंदो। इसराइली वज़ीर आज़म ईरान ते ॿीहर हमला करण जी धमकी ॾेई छॾी। फ़ौजियुनि खे ख़िताब कंदे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चयो आहे त ईरानी हुकूमत बका जी जंग विढ़ी रही आहे। जल्द केराइण में कामयाब थींदासीं। पक आहे त ईरान में इस्लामी हुकूमत ख़तम करे छॾींदासीं। असांजी फिज़ाया ईरान ते ॿीहर हमलनि लाइ तयारु आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जी लीना मेमण जी तरत हे ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास। पीपल्स बस सर्विस, डबल डेकर बस, ईवी टैक्सी ऐं पिंक स्कूटीज मनसूबनि ते गौर। ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त कंबर शादात कोट ऐं लाड़काणो रूट ते पीपल्स बस सर्विस जल्द शुरू कई वेंदी। शर्जी लीना मेमण चयो आहे त नवनि रूट्स ते बस सर्विस लाइ समूरा इंतज़ाम मुकमिल कया वञनि। पीपल्स बस सर्विस जो दायरो वधाइण जो मक़सदु आवाम खे बहितर ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत फराहम करणु आहे। जेको बाद में KPK जे वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदी जी अॻुवाणीअ में PTI जी रैली। सुहेल आफ़रीदी जी अॻुवाणी में निकितल रैली शहर जो गश्त कयो। सुहेल आफ़रीदी चयो आहे त मुल्क में अवाम जी हुकुमरानीअ लाइ जिदोजहद करे रहिया आहियूं। तरक़ीअ लाइ अवाम जी ई ॻाल्हि मञणी पवंदी। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां निंगरी ऐं औरत समेत टिनि ॼणनि जा लाश हथ। बावड़ो भरिसां रहणी केनाल मां औरत जो हथ पेर बदल लाश हथायो आहे। सुञाणप न थी सघी। रोड़ी वेझो क़ौमी शाहरा तां बि नौजवान जो लाश मिलियो। सुञाणप न थी सघी। नगर पार्कर वेझो 15 वरनि जे नीगरीअ जो वण में टंगियल लाश हथायो। अस्पताल मुंतकिल। ॻोठ कोया वासण लक्ष्मी दियारी सिंह कोहलीअ जो घर भरिसां ॿनीअ मां लाश मिलियो। वासण जो चवण आहे त नीगरी कानोड़ी जे ॾिण लाइ कपिड़ा न वठी ॾियण ते आपघात कयो आहे। कराची जे वापारी मीर रज़ा खे जी अदालती जांच जारी। अदालती कमीशन SHO गुलिस्तान जोहर कामरान कुरैशी खे तलब करे वरितो। हेड मरर खे बि नोटिस जारी। कमीशन पारां ॿिन्ही आफ़िसरनि खे 7 सेप्टेम्बर ते पेश थियण जी हिदायत। मीर रज़ा जो लाश गुलिस्तान जोहर थाणे जी हद मां मिलियो हो। गाजी खावड़ वेझो मीरवा जे आबादगारनि जो पाणीअ खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। आबादगारनि पारां पोछड़े ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो कयो। मुज़ाहिरीन चयो त मीरवाह में पाणीअ जी सख़्त खोट आहे। पोछड़ में पाणी पहुची न रहियो आहे। फसल सुकी रहिया आहिनि। आपाशी खाधो पाणी विकिरो करे रहियो आहे। पोछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे। हैदराबाद में हाईवेज डिपार्टमेंट जे मुलाज़मनि जो मुतालबनि जी मंटा लाइ एतिजाज। मुलाज़मनि पारां जाइज़ मुतालबा तस्लीम करण जो मुतालबो। अॻवाणनि चयो आहे त हाज़िर सर्विस फोत थियल ऐं रिटायर्ड मुलाज़मनि जी औलाद खे ग्रेड 1-4 ताईं 25% कोटा तहत फौरी नौकरियूं मिलियूं वञनि। मलीर सिटी जे इलाइक़े गाज़ी बिरोई ॻोठ जे मलीर मॉडल सेकेंडरी स्कूल जी इमारत ते कब्ज़ो बरक़रार। सभई शागिर्दनि ऐं शागिर्दाणियुनि एहतियातनि रोड ते असेंबली करे रोड ते ई पढ़ण लॻा। उस्तादनि ऐं शागिर्दनि पारां स्कूल तां कब्ज़ो ख़तम कराइण जो मुतालबो। घोटकी पुलिस मुबैना तौर टिनि नौजवाननि खे खंभे गुम करे छॾियो। वारसनि जो एहतियाज। टिनी नौजवाननि खे आज़ाद करण जो मुतालबो। ॻोठ अबुल मीर बहार जे रहवासियुनि पुलिस जे ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ एहतियात कयो। अॻवाणनि चयो त घोटकी पुलिस हफ़्तो पहिरीं टिनि नौजवाननि तनवीर अहमद तौफ़ीक नोमान मीराणीअ खे खंभे गुम करे छॾियो आहे। नौजवाननि खे आज़ाद कयो वञे। सोभो देरो में पैरामेडिकल स्टाफ जो पुलिस ख़िलाफ़ इस्पताल खे ताला हणी एहतियात। रूरल हेल्थ सेंटर सोभो देरो जे डॉक्टरनि ऐं समूरे स्टाफ اسپتال اگیا مظاہرو بھی کیا ملازمن جو چوڑا ہے ایس ایچ او اسپتال میں ملازمن کے گتھا لفظ گلایا ہے کیس داخل کرن جو کیس دھمکیوں نہیں چلو ہے انصاف کرو ہنے

सखर में मोटरसाइकिल चोराए फरार थींदड़ हिकु जवाबदार खे शहरीनि पकड़े वरितो। ॿियो फरार थी वियो। नादरा ऑफिस ॿाहिरां मोटरसाइकिल चोरी करे फरार थींदड़ जवाबदारनि खे शहरीनि पकड़े वरितो। हिकु फोरू मोटरसाइकिल समेत पकड़िजी पियो। ॿियो फरार थी वञण में कामयाब थी वियो। शहरीनि पकड़ियल फोरू पुलिस हवाले करे छॾियो। फुलजी स्टेशन भरिसां 8 ॼणनि जे क़तल केस में 14 ॼणनि जी गिरफ़्तारी। ज़ाहिर हथियार बि हथ कया विया। चांडिया बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में जेड़े दौरान क़तल थियल 8 ॼणनि जे केस में पुलिस जूं कार्रवायूं। पुलिस गुजी इतलाह ते छापो हणी क़तल में मुलविज़ जवाबदार गिरफ़्तार कया। गिरफ़्तार जवाबदारनि में मोहम्मद यासीन सिंगार, तौफ़ीक शेर जान, राशिद चांडियू ऐं ॿिया शामिल आहिनि। गिरफ़्तार जवाबदारनि वटां 3 कलाशनकोफ, 3 G3 बंदूकूं ऐं वॾे अंग में गोलियूं हथ कयूं।

0: ऐं कारूं झरजी कोयल फौजिया सूमरो जे विछोड़े खे चोवीह वर वाहमी विया। संदसि ॻायल गीतन जो अॼु बि हज़ारे दिलनि ते राज बरकरार आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मालवन भारन लाए खुश खबरी, 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो, जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए अवां के खुशहाल बनाए। हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
6: खुश खबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, ठरी रोड मेहरापुर, 03000-338-5569।
7: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
8: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
7: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
8: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर ए आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो विंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ए औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो। राबते लए 0301-2196-851।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453।
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राबते जिले आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा?
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेट हलंदी?
7: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: बलूचिस्तान के जिले कलात में गुजी इतलात सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन 12 दहशतगर्द मारजी वाया। एस पी आर मूजिब ऑपरेशन भारतीय सरपरस्ती में कम कंदड़ दहशतगर्दन के खात्मे लाइ कयो वयो। ऑपरेशन दौरान भारतीय सरपरस्ती में कम कंदड़ 12 दहशतगर्दन के जहनुम बेड़ो कयो वयो। हथियार ए बारूदी मवाद हथ कयो वयो। जिले कच्चे ए भाग बनाड़ी में दहशतगर्दन जो हमलो नाकाम। पुलिस की कार्रवाई में केतरन ही दहशतगर्दन के मारजन जा इतला। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मुश्किल फैसलन सब मुआशी इस्तकाम आयो। पाकिस्तान के बेहर उरूज ए जवाल वे मुआशी चक्कर में वन नींदी। इस्लामाबाद में तकलीफ के खिताब कन्दे नाने वे वफाकी वजीर औरंगजेब है तो मुल्क में सीड़पकारी बढ़ाने लाय सीड़पकार के सहूलतू डे रहा हूं। मुआशी तरीके के जटादार इस्तकाम तरफ वी वनो है। बुनियादी सुधारन वो सिलसिलो भी जारी रखो वो निजी शोबे के मुल्क सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण की सदारत है। ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास। पीपल्स बस सर्विस डबल डेकर बस ईवीस टैक्सी ए पिंक स्कूटीज मनसूबन से गौर ब्रीफिंग में बुधा वो तो कंबर शादातकोट ए लाड़कानो रूट से पीपल्स बस सर्विस जल्द शुरू कई वी। शर्जील इनाम मेमण नव रूट्स से बस सर्विस ला समूर इंतजाम मुकमिल कया वन। पीपल्स बस सर्विस जो दायरो वधाने जो मकसद आवाम के बेहतर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करना है। जैकमाबाद में केपीके के वे वजीर सोहेल आफरीदी की अगवाणी में पीटीआई की रैली। सोहेल आफरीदी की अगवाणी में निकल रैली शहर जो गश्त कयो। सोहेल आफरीदी तो मुल्क में आवाम की हुकुमरानी लाइ जिदोजहद कर रहा हूं। तरके लाइ आवाम की गाल मंझनी पवंदी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकन में नींगरी औरत समेत टिन जणन जा लाश हथ उबावड़ो भरसाणी केनाल में औरत जो हथ पेर बदल लाश मिलो सुणप न थी सगी। रोड़ी वेझो कौमी शाहरा तामे नौजवान जो लाश मिलो सुणप न थी सगी। नगर पार्कर वेझो 15 वरन की नींगरी जो वण में टंगल लाश मिलो अस्पताल मुंतकिल गोट को वासण लक्ष्मी धीहारी सिंह कोहली जो घर भरसा बनी में लाश मिलो। वारसन जो चवण है नींगरी गणोड़ी के ऋण लाय कपड़ा न वी डेण से आपघात कयो आहे। कराची के व्यापारी मीर रजा केस की अदालती जांच जारी। अदालती कमीशन एसएचओ गुलिस्तान जोहर कामरान कुरेशी के तलब कर वरतो। हेड वारंट के भी नोटिस जारी। कमीशन पारा बिन्हीं ऑफिसर के 7 सितंबर से पेश थियण की हिदायत। मीर रजा जो लाश गुलिस्तान जोहर थाने की हद में मिलो हो। गाजी खावड़ वेझो मीरवा के आबादगार जो पानी कोट खिलाफ मुजाहरो। आबादगार पारा पोचड़ मुतालबो मुजाहरीन है तो मीरवा में पानी की सख्त खोट है। पोछड़ में फसल सुकी रहा है। आपाशी खातों पानी विक्रो कर रो है। पोछड़ ताई पानी पहुंचाया वे। हैदराबाद में हाईवेज डिपार्टमेंट के मुलाजमन जो मुतालबन की मंताला एतजाज। मुलाजमन पारा जायज मुतालबा तस्लीम करण जो मुतालबो। अगवाण हाजिर सर्विस फोत थियल रिटायर्ड मुलाजमन की औलाद के ग्रेड 1-4 25 सैकड़ों कोटा तहत फौरी नौकरी मिली वन। मलीर सिटी के इलाके गाजी बिरोई गोठ के मलीर मॉडल सेकेंडरी स्कूल की इमारत से कब्जो बरकरार। समय शागिर्दन शागिर्दानी एहतजाजन रोड से असेंबली कर रोड से ही पढ़ लगा। उस्ताद ने शागिर्दन पारा स्कूल ता कब्जो खत्म कराने जो मुतालबो। घोटकी पुलिस मुबैना तो टिन नौजवान के खंभे गुम कर छो। वारसन जो एहतजाज टिन्ही नौजवान के आजाद करने मुतालबो। गोठ अबुल मीरबर के रहवासन पुलिस के जल्दी खिलाफ एहतजाज कयो। अगवाणन घोटकी पुलिस हफ्तों पेरी टिन नौजवान तनवीर अहमद तौफीक नौमान वीरानी के खंभे गुम कर छो है। नौजवान के आजाद किया वे।

दौलतपुर सफन में चइनि ॿारनि जी माउ जे क़तल ख़िलाफ़ संदसि वारसनि जो दादू में एतिराज़। महीनो अॻु क़तल थियल नुसरत मल्ला जे वारसनि एतिराज़ जी मुज़ाहिरो करे कचहरी रोड ते धरणो हयो। औरत जे वालिद मंज़ूर मल्ला जो चवणु आहे त धीअ जे दौलतपुर सफन वासी शमन मल्ला सां शादी कराई हुई। खेसि चार ॿारनि जो औलाद आहे। हू धीअ खे मुड़ुस ऐं साहुरनि गोलियूं हणी क़तल कयो आहे। मुख़ालिफ़नि ते इल्ज़ाम आयो आहे। नुसरत जे मुड़ुस ऐं ॿियनि खे गिरफ़्तार करे संदनि ख़िलाफ़ क़तल केस दाख़िल कयो। सखर में मोटरसाइकिल चोराए फरार थींदड़ हिकु जवाबदार खे शहरीनि पकड़े वरितो। ॿियो फरार थी वियो। नादरा ऑफिस ॿाहिरां मोटरसाइकिल चोरी करे फरार थींदड़ जवाबदारनि खे शहरीनि पकड़े वरितो। हिकु फोरू मोटरसाइकिल समेत पकड़िजी पियो। ॿियो फरार थी वञण में कामयाब थियो। शहरीनि पकड़ियल फोरू पुलिस हवाले करे छॾियो।

पुलिस जो कार्रवाई पुलिस को जी इतला ते छापो हणी कतल में मुलविस जवाबदार गिरफ्तार कया। गिरफ्तार जवाबदार में मोहम्मद यासीन सिंगार, तौफीक शेर खान, राशिद चांडियो ए बया शामिल। गिरफ्तार जवाबदार वटा टे कलाशन कोफ, टे जी थ्री बंदूकू ए वडे अंग में गोलियों हथ

कारूंझर जी कोयल फौजिया सुमरो जे विछोड़े के चौवीह वरे वहामी वया संदस गायल गीतन जो अज भी हज़ारे दिलन ते राज बरकरार आए।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: असली चीजान चारों मसालों की सुनियाण पर ट्रेडमार्क नंबर चोटी 2000 डीसी करे खरीद कंदा जी जान चारों मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त जी जान चारों मसालो ढोरे सेहतमंद जी जान चारों मसालो जी जान चारों मसालो हर वेजे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 03201800003।
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109।
5: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर 03000-3385-69।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी।
3: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109, 03000 3105109।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03005569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

ताज़ा तरीन अपलोड की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।

0: साईं।
1: सोनी अज त ॾाढी ख़ुशि थी लॻे।
0: हा साईं, ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे।
1: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे।
0: चाचे, जुम्मन जी खुशहाली जो राज़ ख़बर पियो आहे।
1: छा छा?
0: उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइनि। हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सिहतमंद थियनि था, गोश्त सां गॾो गॾु खीर बि वधे थो।
1: वाह सोनी वाह, वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई। पर किथे मिलंदो इहो जी जान सखर चारो मसालो?
0: साईं, रेडीअ ते था ॿुधाइनि, ॿुध अजी वठी अच।
1: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
0: हा साईं हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण, एम ए, डी एच एम एस सिंध, आर एच एम पी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: This time check is brought to you by
1: कैमरामैन जफर सोलंगी नगर सबदर चनो केटीएन न्यूज गाजी खुआड़।
2: नाजरीन मीरपुर बुड़ो जे गोठ मोहम्मद कासिम जे स्कूल में सहूलतन जी खोट बारन एतजाजी मुजाहरो कयो आए इन हवाले सा पेश आए ही रिपोर्ट।
3: नाजरीन मीरपुर बुड़ो वेजो गोठ मोहम्मद कासिम बुड़ो में मौजूद आयो जते ही जको मोहम्मद कासिम प्राइमरी स्कूल आ वो जबून हाल होजन ना गद इन के जके बुनियादी जके सहूलतन उहे न हुजण ते हितां जा जेके सवें ॿार आहिनि उहे इंताई सख़्त परेशान आहिनि। हिन स्कूल में न वॉशरूम न दर न दरियूं बिल्डिंग बि जेकी ज़बून हाल आहे ऐं चौधियारी बि न आहे ऐं उन सां गॾु जेके स्कूल खे मेन गेट बि न पाणी जे लाइ नलको बि न आहे ऐं ॿियूं जेके बुनियादी सहूलतियूं न हुजण ते हितां जा जेके शागिर्द आहिनि सवे शागिर्द आहिनि उहे परेशान आहिनि। अचो त हितां जेके
4: वॾे वज़ीर वादल शाह फरियाल टालपुर ऐं नासिर शाह खे लंडन सॾाए वरितो। इजलास में ठाही आईनी तरमीम बाबति अहम फ़ैसलनि जो इम्कानु।

हिते जे साल सन अमरीका ऐं ईरान में गालियुनि जी बहाली लाइ नए फ्रेम वर्क ते कम शुरू करे छॾियो। बरतानवी मैगज़ीन फाइनेंशियल टाइम्स पंहिंजी रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ओमान ऐं कतर तेहरान ऐं वॉशिंगटन विच में गालियुनि जी बहाली लाइ नए फ्रेम वर्क ते कम करे रहिया आहिनि।

0: అమెరికా మెటల్ జగన్ వివాద్ జిమ్మేవార్ ఇరాన్
1: కాతవ్య ఆయన బారానికి బారన్ జీ ఎన్రోల్మెంట్ బి తమామ్ గణి ఆ 187 బారన్ అసా వట
0: జెడీ ఈవెంట్ సే హోతా అప్నా హర్మస్ మే తేల్ పడదా జాసన్ తే ఇరానీ హమలన్ సబబ్ అమెరికా మే తేల్ మాంగో థీ రయో ఆహే కుజ జహాజ్ ఇరానీ హమలన్ సబబ్ అప్నా హర్మస్ మా గుజరన నథా చాహెన్ జేకే గుజరే రయా ఆహెన్ ఉనన్ కే అమెరికా సెక్యూరిటీ ఫ్రామ్ కరే రయో ఆహే अरब मुल्क ईरान की खुद मुख्तारी एतराम न कड़ मुल्क के जवाब देने लाए केस तक इंतजार करण घुर्जे ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकी जो उर्दनी हम मनसब के बयान से जवाब अब्बास इराकी ईरान से हमलन लाए अरब मुल्क की जमीन ए फिजा इस्तेमाल कई है शायद अर्दनी परदेही वजीर के खबर न है मुश्किल फैसलन सबब माशी इस्तेकाम आयो पाकिस्तान के बीहर उरूज ए जवाल वे माशी चक्कर में वन न डींदी इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब कन्दे नाने वे पाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब है त मुल्क में सीड़पकारी वधान लाए सीड़पकार सहूलतू डेई रहा हूं माशी तरक्की के जटादार इस्तेकाम तरफ वी वनो है बुनियादी सुधारन वो सिलसिलो भी जारी रखो वो निजी शोबे
2: वो सख्त परेशान है स्कूल जो कम रहल है बारा पटे थे का भी सहूलत ना है न वरी थे
0: बलोचिस्तान के जिले कलात में गुजे इतलाते सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन 12 दहशतगर्द मारजी व्या ISPR मूजिब ऑपरेशन भारतीय सरपरस्ती में कम कंदर दहशतगर्द के खात्मे लाय कयो वियो ऑपरेशन दौरान भारतीय सरपरस्ती में कम कंदर 12 दहशतगर्द के जनम भीड़ो कयो वियो हथियार ए बारूदी मवाद हथ कयो वियो जिले कच्छे ए भाग नाड़े में भी दहशतगर्दी जो हमलो नाकाम पुलिस की कार्रवाई में केतनी दहशतगर्द के मारजन का इतला इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी सिंध के सीनियर वजीर शजीलना मेमन की सदारत हेठ ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास पीपल्स बस सर्विस डबल डेकर बसेस ईवी टैक्सी ए पिंक स्कूटीज मनसूबन ते गौर ब्रीफिंग में बुधा वो कंबर शराबकोट ए लाड़कानो रूट से पीपल्स बस सर्विस जल्द शुरू कई वेंदी शजील मेमन नवन रूट्स से बस सर्विस लाए समूरा इंतजाम मुकम्मल कया वन पीपल्स बस सर्विस जो दायरो वधायण जो मकसद अवाम के बेहतर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करना है

सिंधी पैराजिस इम्प्रूवमेंट मनसूबे में अरबें रुपये की बेजाबतियों जो इंकशाफ। पैराजिस मनसूबे की नाके से रिथाबंदी देर से वर्ल्ड बैंक जहा संगीन एतराज। मनसूबे में देर सबब कौमी खजाने से 10 अरब 47 करोड़ रुपये जो वाधू बार पो। पैराजन की बहाली वे मनसूबे में वाधू खर्चन वो बार अवामी खजाने से मुंतकिल थे इंकशाफ।

0: कराची जी अदालत पी वई थी के गाड़ी जी टक्कर में मारींदड़ औरत निताशा के मनशियात केस में बरी कर छो। जवाबदार के वकील अदालत के बुधा तो केमिकल एग्जामिनर ब्लड टेस्ट में निताशा की रत में आइस की मौजूदगी साबित नहीं थी। पुलिस पारा निताशा की वरतल
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460-1000।

इंडिकेशंस क्या हैं, और आज अगर आपकी डेट फिक्स हो गई है तो बताएं कि आपकी शादी की डेट क्या है, और अगर आज आपकी बर्थडे है तो जनाब बताएं कि आपकी बर्थडे में कितना मजा आ रहा है, आपने मना ली या मनाने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ चाय पीने जा रहे हैं तो भी बताइए, अरे जनाब शॉपिंग पर आ रहे हैं सखर तो भी बताइए, लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो भी हमसे शेयर कीजिए, और जनाब जो दिल चाहे आपका हमसे शेयर कीजिए, अपनी दिल की बातें हमसे शेयर कीजिए ताकि आपके दिल का बोझ हल्का हो और आपकी खुशी डबल हो जाए, आपका गम हल्का हो जाए और आप रहें मेरे साथ बहुत कूल। आपका अपना अशफाक नियाज़ी जहां जहां तक सुना जा रहा है वहां वहां तक के तमाम दोस्तों को हम अपना नंबर एक बार फिर से बताते चले, 03000113488। अगर आपने मुझे SMS करना है तो जनाब GFM88 नेटवर्क के पेज पे जाइए, वहां पर मेरे प्रोग्राम का जो है आपके पास फ्लायर आ रहा होगा, वहां पर जनाब मेरे को नीचे से मैसेज कर दें उस फ्लायर के नीचे, और जनाब फिर हम आपके मैसेजेस को शामिल शो करेंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जनाब, बिल्कुल आप जाइए जनाब अपने मैसेज में टाइप कीजिए SKR स्पेस दीजिए और जनाब अपना मैसेज लिखिए, शहर का नाम लिखिए और सेंड कर दीजिए 888 पर, हम आपके मैसेज शामिल शो करेंगे। तो गाइस 5 से 7 तक मेरा और आपका साथ रहने वाला है। टेम्परेचर की बात करूं तो जनाब आज 38 टेम्परेचर है सखर का, और जनाब इसके बाद भी यही टेम्परेचर रहने वाला है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रात ठंडी हो जाती है। खैर जनाब आप हमें कॉल कीजिए, हमारे साथ बातें कीजिए और बहुत सारी बातें कीजिए, क्योंकि थोड़ी बातों से काम नहीं चलने वाला। तो आज गाना शाना नहीं चला रहे, लेते हैं शो की पहली पहली कॉल, देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। चलें चलें जी, आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस फोन कि ऐसा ही होगा, पर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हम आपके लिए गाना चला देते हैं जनाब, तो आप इस गाने को सुनिएगा। अशफाक नियाज़ी आपके साथ है और जनाब मेरे साथ रहकर आप इंजॉय करें फिलहाल जबरदस्त सा गाना, सौदा इक जया दिल लेना ते दिल मंगना ऐसा दा इक जया, क्या बात है। तो जनाब इस गाने को आप सुनिए, अशफाक नियाज़ी के साथ रहिए, और जनाब जनाब जनाब जनाब शाम के 7 बजे तक मेरे साथ रहिए। गर्मी हो सर्दी हो खिजा हो बाहर हो, लेकिन आपने इस गाने को जरूर इंजॉय करना है, मेरे साथ रहकर इस ट्रांसमिशन को जरूर इंजॉय करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जितनी देर हमारे साथ रहें उतनी देर आपको बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप बोर फील हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप रज रज के एंजॉय करें और हंस हंस के एंजॉय करें। तो एंजॉय कीजिए ये जबरदस्त गाना और हमारे साथ रहिए GFM88 नेटवर्क पर शो आई लव यू ऑल में।

0: जना वेलकम बैक वे सोने दे कंगना सौदाई को जया दिल देना ते दिल मंगना सौदाई को जया क्या बात है जना बहुत प्यारा सा और बहुत एनर्जेटिक सा गाना हमने आपके लिए प्ले कर दिया। आई एम श्योर कि आप लोगों की जो है एनर्जी लेवल बहुत हाई हो चुका होगा और हम यही चाहते हैं कि आप जहां भी रहें आपका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई रहे। खैर जनाब लेते हैं शो की एक और कॉल यानी कि पहली कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। आप हमारा नंबर नोट डाउन कीजिए 03000113488 और कॉलर को कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब हमारे कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी क्या हाल है? ठीक ठाक मजे में तमाम बुधायो। हेलो हेलो अच्छे थी आवाज।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जलूरी खाम अकेले के। हेलो हेलो आवाज अच्छे थी अदा।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम अदा।
1: हेलो
0: अब बड़े मरिया से हने केतरो दफा चकमा से।
1: हेलो इशराक भाई।
0: जी जी मुझे प्यारा जलूरी का भा कुर्बान खास।
1: हेलो अदा कुर्बान अली खास करी मेरा गोटा जी गुलाम खास करी लबी गंडो मरी का भी आवाज कौन से
0: अदा आवाज कौन थी अच्छे हाने अच्छे थी।
1: हेलो
0: हेलो मैं जिस बात हुई है तो मैं
1: रोने लगा। मोबाइल से आवाज से तो
0: अदा दिसो अच्छे थी हाने आवाज
1: आवाज में बहुत
0: तमा गले दा वनो। हेलो हेलो
1: चुप कोनो अच्छे
0: ठिप कोन थो अचे आवाज़ भाऊ हाणे छा कयूं। अच्छा बाबा ॾिसूं हाणे ठिप त अचणु खपे। अब मैं क्या कर सकता हूँ कहाँ जाऊँ किसको खाऊं ये बताएं। वहां से थोड़ी सी देखें तारे मारे हिलाएं थोड़ी सी क्या पता है इस तरह हो जाए। एनीवे आपका अपना इशफाक रियाजी आ चुका है आपके साथ आपका अपना शो है जनाब और ये टेक्निकल फॉल्ट्स जो होते हैं अमूमन मेरे हिस्से में क्यों आ जाते हैं। तो जनाब देखते हैं अब एक और कॉल लेकर के क्या है

0: ओके सुठो गानो तव्हांखे ॿुधायूं था कंहिंजे नाले करणु चाहियो जी जी
1: जी जी
0: जी जी वालेकुम अस्सलाम थैंक यू अदा थैंक यू सो मच जमालुद्दीन भाई साहब जी जरा हमारे साथ है जमालुद्दीन भाई साहब और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हम लेते हैं शो की एक और जबरदस्त कॉल देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: जी जनाब केर असा सबनी सा गडो
2: नयार अली कलोड़ो कल दियारे खान जिला नौ शरफ
0: माशाल्लाह जिला नौ शरफ का मयार अली कलोड़ो साहब केड़ा हाल चाल है ठीक ठाक आयो
2: अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है मामू के नाम मयार अली कलोड़ो
0: मेहर सॉरी मेहर मेहर मेहर मेहर साहब ठीक ठाक आयो मजे में आयो
2: अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है ता बतायो
0: हां फर्स्ट क्लास ए वन जबरदस्त यो बतायो तो छा कदायो दा
2: सर सा बजे हां टिकू गेते कोन ने सफाई भी बने गेते बुखार दुखार दा
0: अच्छा अच्छा
2: जी
0: अच्छा माशाल्लाह ये बुधायो तो तंगे से प्रोग्राम के लगन दुआ
2: प्रोग्राम जबरदस्त लगन वा
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह ये बुधायो कलवड़ भाता गानो मुमताज लाशा
2: कलोड़ो कलोड़ो न कलोड़ो
0: कलोड़ो साहब ये बुधायो हाने जेको मा गानो तो लाया मुमताज लाशारी जो केजे नाल त करना चाहो
2: ओ मुंजो बावा मा मा अमीन कलोड़ो कंडिया रे खान सार कलोड़ो बुधी बे अफजल कलोड़ो जेके बुधाना उन के सबनी के
0: हमारे साथ बहुत प्यारे से कॉलर जनाब जमालुद्दीन भयो साहब कलहोड़ा भाई और अब देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर कौन आने वाले हैं जनाब अपने कॉलर को हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम हेलो जी जनाब अपने कॉल अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम अस्सलाम
0: एक तो आपका ये टाइम बहुत खराब है यार इरफान 26 होते तुम आ जाते मेरे साथ
3: हाँ यार हर किसी का अपना अपना टाइम है
0: अपना अपना टाइम है वाकई और ये टाइम बहुत खराब है
3: पता है नहीं एक तो पता नहीं आप में फॉल्ट है आपके फोन
0: मुझ में फॉल्ट नहीं है बस वो फोन को मुझसे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी
3: मैंने पहले आपको एक मशवरा दिया था ना
0: कौन सा वाला
3: जिस टाइम आप अपना शो करेंगे अपने फोन से एक सिम निकालें और ये सिम डालकर प्रोग्राम करके और फिर उसी फोन में सिम डालकर आप चले जाएं
0: बस क्या करें अब यू ही करना पड़ेगा मेरे भाई
3: एक ही टाइम सुई बचनी पड़ी मोबाइल मार्केट
0: बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक जी जी बिल्कुल इरफान भाई क्या हाल चाल ठीक ठाक आए हो मजे में आए हो
3: अल्हम्दुलिल्लाह आज पाक भाई बिल्कुल ठीक ठाक लगा पे आए हूँ तमाम बुधायो की आयो
0: फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास एवन अल्लाह साईं जो करम मन
3: माशाल्लाह अज असान जी सिंध जी तमाम बेहतरीन सिंगर आई माचनम त थर जी कोयल न बल्कि सिंध जी कोयल फौजिया तुमरो जी अज वर्ती है
0: ओ ग्रेट तमाम शुक्र असां याद करायो जी जी
3: जी बिल्कुल मां सोचिंदम मां चाहिंदम त अज उन जो सॉन्ग चले थे
0: प्ले कयां थो ॿ फरमाइश अची चुका आहिनि मुमताज़ लाशारी साहब जी त कंहिंजे नाले था करणु चाहियो
3: बिल्कुल दोस्तनि जे नाले कंदासीं ऐं कोशिश कजो त मुंहिंजी पसंदि जो सॉन्ग हलाइजो जेकॾहिं हलाईंदो त तव्हांजी महिरबानी न हलाईंदो त काई ॻाल्हि न आहे
0: कहिड़ो
3: जेके उदारा मूं सवलाइ पकी आहे
0: ओके ओके ओके इनशाला इनशाला ज़रूरु
3: ऐं सलाम सिस्टर मिसिस अली ऐं सिस्टर फौज़िया फरज़ाना सिस्टर दुआ खान रायत कुमरो मुमताज़ कुमरो हुसैन बख़्शिस्करो हाफिज़ ग़ुलाम अहमद सांबल नज़ीर मंगीरो बचन चमानी बाक़ी जेके दोस्त ॿुधनि था सभिनी खे इरफान अली से पारां फ़ौरन फ़राख़
0: ला वालेकुम अस्सलाम थैंक यू इरफान भाई
3: तव्हांजी जान छॾी आहे इहो मिठाई विराइजो
0: थैंक यू जीते रहो थैंक यू सो मच हम प्ले करते हैं मुमताज़ लाशारी का प्यारा सा गाना सुनिए और हमारे साथ रहिए

0: वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 03-01-2196-8151
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03075 3529 20।
2: अदा
3: वालेकुम असलाम, अदा छो परेशान आई?
2: अदा नौ दुकान खोलियो तुम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न? अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर, राबते लाए मंसूर अमन मेमन, 03013808743।
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: त यो गानो केके डेडिकेट कन्दो
1: सलाम मस्करा जी का शुमर से यानी मेरा यहां फिक मेरा सलाम मान तो खोल ली
0: अच्छा
1: बदिना से मेरे के भाई का सलाम
0: धन्यवाद वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम थैंक यू अदर थैंक यू सो मच ता पांच खास क्या रख जो
1: मेहरबानी अल्लाह को
0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी जनाब हमारे साथ थे बहुत प्यार से कॉलर अली गुलमिरानी साहब और बड़ी जबरदस्त शायरी के साथ वो हमारे साथ मौजूद थे तो जनाब आप देखते हैं कि हमारे साथ लाइन शाइन पे कौन आ चुके हैं और जनाब कहां से हैं देखते हैं अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब तो हमारे साथ जो कॉलर थे वो तो हो गए हैं पर कोई मसला नहीं है हम आपको कहते हैं कि हम हैंग नहीं हो और ना आप हैंग हो बल्कि आप और हम जो हैं वो यूं ही बातें करते रहे मोहब्बत की प्यार की और ज़बरदस्त तरीके से अपनाइत की क्योंकि जनाब अपनाइत की बहुत ज़्यादा कमी हो गई आजकल माशरे में और हम चाहते हैं कि जनाब अपनाइत जहां मिले वहां पर समेट लो ये ना हो कि जनाब बस एक दूसरे की शक्ल देखते रहें और सिर्फ टाइम ख़राब करते रहें ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि हमें अपनाइत को समेट लेना चाहिए क्योंकि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर हर वक्त दूसरों की ज़िंदगी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कोई कामयाब नज़र आता है कोई खुश नज़र आता है कोई सफ़र कर रहा है तो कोई नई चीज खरीद ला है लेकिन याद रखें सोशल मीडिया पर नजर आने वाली जिंदगी पूरी जिंदगी नहीं होती दोस्तों अपना मवाजना हम समटाइम बल्कि बहुत बार दूसरों से कर रहे होते हैं हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा सफर हमारी रफ्तार और हमारी मंजिल अलग अलग होती है हम अपनी तालीम पर तवज्जो दें अपने हुनर को बेहतर करें अपने वालदैन की कदर करें अच्छे दोस्त बनाएं और अपनी ज़हनी सुकून को हर चीज से ज्यादा अहमियत दें और हाँ एक बात और हमेशा याद रखें फौरी कामयाबी न मिलने का मतलब ये दोस्तों बिल्कुल नहीं होता कि आप नाकाम हैं या हम बहुत ज़्यादा पीछे रह चुके हैं नहीं बाज़ औक़ात हमारी अच्छी चीज़ों को होने में वक्त लगता है और नौजवानों के लिए एक और बात गुस्से में कभी फैसला ना करें जज्बात में रिश्ता ना तोड़ें और चंद लम्हों की मायूसी में अपने मुस्तकबिल के बारे में फैसला बिल्कुल ना करें क्योंकि आपका आज आपके कल की बुनियाद है अगर हमारा आज बहुत अच्छा होगा तो यकीन जाने हमारा कल भी बहुत अच्छा होगा तो जनाब उठंदे बेहंदे हुसन मानो हुसन मारन जो मूरी सन भी सवाबा जरूर प्ले करेंगे हम अपने अली गुलमिरानी साहब की फरमाइश पर हुसन मारन जो मूरी सन भी सवाबा लेकिन उससे पहले जनाब लेते हैं शो की एक और कॉल देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन आ चुके हैं अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जी हेलो ओए होए जी ना हमारे साथ लोग आते हैं फिर थोड़े से उनको आवाज नहीं आती तो वो कॉल डिस्कनेक्ट कर लेते हैं लेकिन कोई बात नहीं है हम लेते हैं शो की एक और कॉल देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: जी जनाब के रसना सब नहीं सांगर
2: हबीबुल्ला सोलंकी
0: हबीबुल्ला भाग के हाल चाल सब ठीक ठाक है हो
2: खैर सही चाहूं लगी पंचानी
0: सफा मजे में
2: सफा मजे में
0: हबीबुल्ला साहब यो बुधायो त जेको आहे मां गानो तो हलाया उठंदे वेहंदे हुस्न वारन जो मु दिसण भी सवाब कहें जे नाले त करण चाहियो
2: या भी कलाम हां मजा भाई रहे न
0: जी जी
2: जमील अहमद सोलंकी रफी कु सोलंकी अब्दुल गनी सोलंकी गुलाम हैदर सोलंकी वसीम सोलंकी
0: अच्छा
2: आजो
0: सही सही मेहरबानी सोलंकी साहब पांचो खास का रख जो मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी जी जनाब हमारे साथ थे सोलंकी भाई और इनको सुनवाते हैं बहुत प्यारा सा गाना उठंदे वेहंदे हुसन वारन जो जेको आ मूड सण भी सवाब आ अली गुलमिरानी साहब मौजूद है असां सभी सां गॾु हुन जी फरमाइश ते प्ले करे चुका आहियूं त ॿुधो ऐं खोर सां एंजॉय कयो

0: मिनट हुआ चाहते हैं जनाब, और इस एक घंटे को खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं और हम आपके साथ रहते हैं 2 घंटे। सो डोंट वेरी एट ऑल यार, अभी 1 घंटा और 10 मिनट बाकी हैं। आप हमें कॉल कीजिए 03000113488 पर और जनाब अपनी फरमाइशें पूरी करवाइए हमसे, गपशप भी कीजिए। इकबाल आशारी हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं बिले सोनू खान आशारी मीरपुर खास से सुन रहे हैं अशफाक भाई, नाइस शो, थैंक यू सो मच इकबाल आशारी भाई। अब्दुल रजाक भाई ने अगेन मैसेज किया है, सॉन्ग बुधायो फौजा सुमरो जो छो असी अवां जे दुखन मां, ठीक आहे मां फौजा सुमरो जो तव्हांखे ज़रूरु गानो ॿुधाईंदुमि पर फोन जी कॉल वठूं था हिकिड़ी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम,
1: वालेकुम सलाम भाई इश्क,
0: क्या बात है, हमारे साथ हैं जनाब वहीद जतोई साहब, आई थिंक
1: सही, बिल्कुल बिल्कुल, वफा अब्दुल वहीद जतोई सडियो विंदो आ केटी शाबिलो,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, वफा अब्दुल वहीद जतोई साहब
1: मतलब कुरेश गोट आए नी,
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: इन को हेठ वनो त अध कलाक जो पंध आए मतलब मुनी कलाक जो,
0: अच्छा तहां दे,
1: जी जी बिल्कुल,
0: गुड गुड वेरी गुड, तहां जते भी हो सो क्या हो जो, यो बुधायो त जको आहे गर्मा गर्मी तव्हांजी गेम गुज़री थी ऐं सियारे वारे जो छा प्रोग्राम आहे उहा तव्हां असांखे ॿुधायो त जेको जेको काना फुटंदा आहिनि अलाए छा फुटंदो आहे उहा तव्हांखे ख़बर,
1: बिल्कुलु उहे आहिनि उहो चिट जो हिकिड़ो कां जो ॿूटो फुटंदो आहे या वरी रुग जो हिकिड़ो ॿूटो हूंदो आहे जंहिंमें वाण न ठहंदो आहे,
0: जी जी,
1: त उहे माना वाण त कां बि ठहंदा माना उहे जेका रुग आहे उहा न निसरी आहे त कां निसरी आहे,
0: अच्छा त माना हाणे सी ईंदो
1: जो माना ढिढो कढियो आहे, ढिढो असां चवंदा आहियूं,
0: अच्छा ढिढ माना टमी,
1: जी जी बिल्कुल,
0: जेका असांजो पेट आहे ईअं माना,
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: ओके ज़बरदस्त ज़बरदस्त, अदा मां हाणे हलायां थो फौजिया सुमरो जो गानो थोरी देरि में, पर तव्हां अॼु फरमाइश कयो मां नेक्स्ट आवर में
1: हलाईंदुमि,
0: हा बिल्कुलु नेक्स्ट आवर में हलाईंदुमि, हाणे नथो हलायां, तव्हां ॿुधायो पंहिंजी फरमाइश,
1: बिल्कुलु उहो तव्हां हले जो फौजिया सुमरे जो बहितरीन नगमो,
0: जी
1: बाक़ी अली गुल मीराणी त अहिड़ियूं फरमाइशूं कंदा आहिनि जलाल चांडियो, पर मां वरी ईअं थो चवां त वेहंदे मूं ॾिसजे हुसन वारनि जो, पर उथंदे न ॾिसजे,
0: उथंदे छो न ॾिसजे भला, मोशन थी लॻे, मोशन थी वेंदा
1: आहिनि, कार सां भॼंदो ईंदो त किथां हुसन ॾिसंदो,
0: अच्छा मां चयो त मोशन मोशन थी वेंदा आहिनि,
1: ऐं तंहिंखां बाद में तव्हांजो मनी रामता बाबर शेख साहब जो ॿुधे थो,
0: अच्छा वालेकुम अस्सलाम,
1: ऐं भाणी जो रफ़ीक जतो ई खीर वारो,
0: जी जी
1: हाणे मां तव्हां खीर खणी वियो हुजे,
0: अच्छा ज़बरदस्त,
1: जी जी, ऐं मुंहिंजो भाउ ज़हीर मन जतो ई, मुंहिंजो भाउ थियो आहे अयाज़ मन जतो ई,
0: अच्छा
1: बाक़ी जेको तव्हांजी टीम जा ॿुधंदड़ आहिनि वफ़ा अब्दुल वहीद जतो ई पारां सॼे सत खे सलाम भाई,
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: बाय बाय,
0: थैंक यू, हमारे साथ जना वहीद और वहीद जतोई भाई बहुत अच्छे से हमारे कॉलर हैं जो कि आते हैं हमेशा हमारे साथ और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो लेते हैं जनाब शो की एक और कॉल, देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन है, क्योंकि आप हमें कॉल कर सकते हैं जनाब 03000113488 पर और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, इस वक्त हम मैसेज शामिल शो करते हैं जनाब नज़ीर धारे जो और शम्मन अली भयो की जानिब से, दोनों कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपका शो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, हम आपका शो बड़े गौर के साथ और बड़ी चाह के साथ सुनते हैं हमेशा और बड़ा मज़ा आता है आपके शो सुनकर, हम कभी कभार आपको मैसेज करते हैं और कभी कभार फरमाइश भी करते हैं, तो आपको कैसा लगता है जनाब, हमें तो बहुत ऐसा लगता है, आप बताइए कि आपको हमारा शो सुनकर कैसा लगता है, आप को हमारा शो अगर अच्छा लगता है तो आप हमें जरूर बताइए, बहुत सारी तारीफ कीजिए किया कीजिए मैसेजेस में हमारा खून बढ़ता है, एनीवे गाइस आई एम जस्ट किडिंग, और आप हमारे साथ आएं और गानों की फरमाइश करें, हमें कॉल कीजिए 03000113488 पर हमारा नंबर है और इस नंबर पर आप हमें कॉल करके अपनी फरमाइशें भी पूरी करवा सकते हैं, और जनाब देखते हैं कि अब हमारे साथ फरमाइश, हेलो जनाब हम कॉल भी अटेंड कर लेते लेकिन आवाज नहीं आ रही होती, पता नहीं क्या मसला हो जाता है कभी कभार। नंबर है और इस नंबर पे आप हमें कॉल करके अपनी फरमाइशें भी पूरी करवा सकते हैं। और जनाब देखते हैं कि अब हमारे साथ फरमाइश पूरी करने वाले कौन से दोस्त हैं जो कि हमें कॉल कर रहे हैं। हेलो 3000134888 हमारा नंबर है, नंबर एक बार फिर से नोट डाउन कीजिए 3000134888। लेते हैं शौकी एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक अलहमदुल्ला मुझे प्यारा भा खेर सा सबनी सा गड
2: अमीर बख्श मंगरहार जिलो गोट के मिश्री
0: अमीर बख्श मंगरहार साहब आज केड़ो गानो मुझे शो में बुधन चाहो था
2: सही फौजिया जो तो कान जी पसंद आ करो आ रहे थी नाराज न थी जाने
0: जी जी जी हाजिर हाजिर हुकुम हुकुम
2: जमे जदी जिंदो नमाज प्रकार से जी अपने दुआ के तो से काल खन को करा से हाथ लो
0: थी सॉरी यार तवा जी काल जी इंडिया तो मां इंशाल्लाह खन जी पूरी पूरी कोशिश कंदो आने में अच्छा क्या प्यारा भाव ओके तो जनाब हम फौजिया सुमरो का एक बहुत प्यारा सा गाना आपकी समातों की नजर कर रहे हैं तो आप इस गाने को सुनिएगा और फिर हम एक और गाना भी आज इनका प्ले करेंगे क्योंकि जनाब हमारी फौजिया सुमरो की आज जो है बरसी है तो हम अब ये गाना जो है प्ले कर रहे हैं अपने इरफान भाई की फरमाइश पर और दो और हमारे साथ कॉलर आए थे उन तमाम दोस्तों की फरमाइश पर। तो सुनिए और हमारे साथ रहिए।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 03201800003।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000310509 03003105109।

0: जगह जा पावा ऐं पाइप डेढ ब चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तयाब आहिनि।
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-46-0100।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: ये

0: ਦੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹੇ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਜੇਕੋ ਹੈ ਸੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਹਿਕੜੀ ਕਿਰਿਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋ ਜੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਹ ਲਾਲਚ ਜੇ ਬਗੈਰ ਕਿਹ ਜੇਕੋ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੰਦਾ ਆਇਓ ਤਾਂ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰੀਜ਼ ਬੁੱਧਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਜੇਕੋ ਹੈ ਸੋ ਹਿਕੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਿਲ ਕਨਿ या अड़े तरीके से जो पेशेंट अवेयरनेस उनके मिली है या जो ठीक थी वादा तो ऐसो पाँ व्यूज रिकॉर्ड कराइना असा वट या जो है सो पेशेंट कॉल लाइव कॉल करो है सो एक असा इनकरेज कर हिमथाण के लिए जो है सो एक बुधाइंदा तो असा इो सिर्फ असा इनकरेज क्या बल्कि हि असा भी जो व्यूज जो मरीज जहाँ रिकॉर्ड करा तो सिर्फ इन के तो मरीज जी बया बुधन उन्होंने खबर पे यकीन थे तो होम्योपैथिक दवा में एतरो जो सो असरात हों वी टाइम अवजो तमाम घो वरतो यसन भाई थैंक यू
1: तमाम घड़ी मेहरबानी सर माशाल्लाह तमाम तमाम एक बेहतरीन जान पे बुधन के डॉक्टर साहब कॉलन जो सिलसिलो जारी थी चुको है कॉलन की तरफ भी हलंदासी इन का पे अस प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सोता लाइव कॉल जो नंबर है 0301-91-851 हलंदासी प्रोग्राम जी पे कॉल जी तरफ दिसंदो लाइन ते केर मौजूद है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अदा आवाज जो आवाज सही न पियो छे जगह चेंज कंदा
2: आसाई मा
1: प्रोग्राम सेहत की गाल असाजे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर मंजूर हुसैन महमूद साहब असाजे लाइव कॉल असाजे प्रोग्राम में अवां लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था लाइव कॉल जो नंबर है 0301-91-851 हलंदासीं प्रोग्राम जी हिकु ॿी कॉल तरफ़ अस्सलाम वालेकुम
2: साईं छा हाल आहे अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम छा पुछण चाहींदा दादा डॉक्टर साहब खां
2: साईं हो मूंखे मसलो आहे त मूंखे 10-15 सालनि खां सीने में हिकिड़ो गुड़ो आहे जंहिंमें मिटी निकिरंदी उन मां माना 15 सालनि खां वठी उते गुड़ो आहे हाणे मूं उन में सूर कोन आहे माना छा माना मां इलाज कराइण ऑपरेशन थींदो या इन जो कुझु निकिरंदो सिस्टम
1: ठीकु आहे दादा डॉक्टर साहब अव्हांखे ॿुधाए थो रेडियो ॿुधो
0: महिरबानी अदे खे ॿुधाईंदुसि हिकु त नेटवर्क सही न हुजण जे करे भाउ जो आवाज़ बि जेको आहे सो कटिंग थिए पियो लेकिन मर्ज़ जेको भाउ ॿुधाए पियो त उहो ज़ाहिर आहे त जेको आहे सो पुराणो आहे हुनखे उन जे लाइ अदे खे इहो ई चवंदासीं त इहे मसाइल जॾहिं वॾा हूंदा आहिनि ऐं माण्हू पहिरियों ऑपरेट बि कराए चुको हूंदो आहे त उनजो बहितरीन हल इहो हूंदो आहे त रूबरू कहिड़े बि डॉक्टर खे रूबरू वञी ॾेखारे रूबरू ॿुधाए त पोइ उहो उते ई जेको आहे सो डॉक्टर उन मर्ज़ खे ॾिसी करे ऐं सही सजेस्ट करे सघंदो त इनजो छा हल हूंदो आहे इनजे करे अधे खे इहो ई चवंदासीं त सुभाणे क्लिनिक ते अची ऐं रूबरू ॾेखारियां
1: तमामु घणी महिरबानी सर हलंदासीं हिकु प्रोग्राम जी ॿी कॉल जी तरफ़ अस्सलाम वालेकुम हैलो अस्सलाम वालेकुम

0: ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहब ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। सूमर ते पेट्रोल पंप कोटरी रोड मैरापुर में मरीज़नि ऐं नोट अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं हिन में हफ़्ते जा टे ॾींहं जुमो चेक फ्री मरीज़ खे वधीक इंतज़ार नथा करियूं। जी अदा साहब खां ॿुधायो। जी सर,
1: जेको आहे सदर में मुबतला हूंदा आहिनि उन हवाले सां, हिकु त चांहि जो इस्तेमालु घटि करिणो आहे, तरियल शयूं, खटी शयूं ऐं चांवर जो इस्तेमालु बंदि इस्तेमालु कयो। उन खां पोइ आलू बुखार जेके ख़ुश्क हूंदा आहिनि उहे चूसण सां बि काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे, या सौंफ चूसण सां बि काफ़ी राज़ फ़ाइदो पइजी वेंदो आहे। लेकिन जी बहितरीन मुकमल हल जेको आहे न, सो होम्योपैथिक दवा में आहे। होम्योपैथिक दवा अव्हांखे ख़बर आहे त जेको दर हूंदी आहे, को साइड इफेक्ट हूंदो आहे। मेडिकल में क़िस्म जो को कैप्सूल या अहिड़ी का दवा रेगुलर खाईंदो ईंदो आहे, साइड इफेक्ट आहिनि जो माण्हुनि जो कैल्शियम ख़तमु थी थो वञे, हॾनि ते असरात अची वञनि था, गुर्दनि ते असरात अची वञनि था, जिगर ते असरात पइजी वञनि था। इन जे करे उहा इन्हनि शयुनि खां जेको आहे सो ख़ालसतन बचो ऐं क़ुदिरती शयुनि जी तरफ़ जी मां ॻाल्हि कई, सौंफ़ तमामु बहितरीन, सौंफ़ ऐं जीरो तव्हां जेको आहे सो काढ़े पाणीअ में पी सघो था, उहो काफ़ी फ़ाइदो तव्हांखे ॾिसी सघे थो। सौंफ ईंदा आहियो ईअं काफ़ी तको फ़ाइदो पइजी वेंदो आहे। पुदीना हिकिड़ो फूदिनो जंहिंखे चवंदा आहियूं त उहो तमामु हिकिड़ो हिन जे लाइ तमामु बहितरीन आहे। फूदिने जो शरबत थींदो आहे, उहो तव्हां पी सघो था जेको आहे सो, ऐं अहिड़ियूं शयूं जेके नुक़सानु ॾियनि थियूं ऐं उहो तव्हां उनखे बंदि करे छॾियो। ऐं पंहिंजो खाइण पीअण जो जेको रूटीन आहे, लाइफ स्टाइल पंहिंजो आहे, उनखे थोरो

0: बिज़नेस अहिड़ा हूंदा आहिनि, टाइम ज़ाया कंदा आहिनि। तव्हां बि चयो पहिरियां त उनखे कॉल कर, या को मरीज़ हूंदा आहिनि का ॻाल्हि पुछणु चाहींदा आहिनि त मेरे कॉल कर।
1: बिल्कुलु न, इहा ई ॻाल्हि मां प्रोग्राम जी शुरूआत में करियमि त अहिड़े क़िस्म जा पंहिंजे मोबाइल में इस्तेमालु कंदासीं।
0: जी जी,
1: नंबर थी वेंदा
0: बिल्कुलु सर,
1: जीअं उन्हनि ते बि वरी एक्शन खणी सघे छो जो हिकिड़ो बार बार माण्हू चवे थो पियो त उन ॻाल्हि खे सम्झणु घुरिजे। माण्हू त अॼुकल्ह

0: तव्हां खे डॉक्टर साहिबु ॿुधाए थो, लेकिन रूबरू ॾेखारींदो त वधीक बहितर थींदो। ठीकु आहे, रेडियो ॿुधो, तव्हां खे डॉक्टर साहिबु ॿुधाए थो। जी सर,
1: अजय सिंह, बिल्कुलु ही अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ हूंदी आहे, हिकु आम तकलीफ़ नाहे, का उल्टी या बुखार या नज़लो हुजे जो तव्हांखे फ़िलहालु को आर्ज़ी टोटको ॿुधाइजे या मथे जो सूरु हुजे। हीअ पिते में पथरी आहे, ज़ाहिर आहे त उन जो हल थींदो ऐं हूअ मेडिकल में उनजो हल ऑपरेशन आहे। असां वटि इन जी हल जेको आहे सो ट्रीटमेंट ई आहे, दवाई आहे, सो बि को हिकिड़े वेले जे हिसाब सां दवा न हूंदी आहे। तकरीबन टे महीना चार महीना दवा खाइबी आहे, सो बि पेशेंट जो अल्ट्रासाउंड थियल हूंदो, उनखे रूबरू ॾिसी करे त उनमें ॾिसिबो त उनखे केतिरी MM जी पथरी आहे, पोइ उन हिसाब सां पिते जी छा पोज़ीशन आहे, उनजा वाल्स जी छा पोज़ीशन आहे, पोइ जेको आहे सो ऐं पेशेंट जी कंडीशन छा आहे, उनखे ब्लड प्रेशर आहे, शुगर आहे, या रत जी कमी आहे, या माथे जी तकलीफ़ आहे, या फैटी लिवर आहे, या ॿिया का तकलीफ़ आहे, त पोइ जेको आहे सो उनखे उन हिसाब सां तकलीफ़ रहंदी आहे। इहे हिते तव्हां उनखे यानी दस पंद वारी बीमारी न समझो, ये हिकड़ी तकलीफ़ है जैसी मुकम्मल ट्रीटमेंट थी तो अल्लाह कह बगैर ऑपरेशन के तवा पिते की पथरी निकरी वी पर इलाज से। ठीक है, सो तुभा रूबरू पेशेंट के वी अची अल्ट्रासाउंड भी खी दिखारे वो वही मेहरबानी।
0: प्रोग्राम है सेहत की गाल, प्रोग्राम सेहत की गाल में शामिल थी सको था। इन लाइ लाइव कॉल नंबर आहे 0301-8196-851 0301-2196-851। डॉक्टर साहब जो एड्रेस ऐं टाइम नोट कंदा। डॉक्टर साहब हरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक साम्हूं वदन पोटा पेट्रोल पंप कोटी रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर ऐं चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे, बाक़ी दवा मरीज़नि खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में संदनि, जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुन रग जो सूरु, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछू, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघु, TB, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस BC, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंगु सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। ऐं असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-8196-851। इन नंबर ते कॉल करे तव्हां कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब सां राबितो करे सघो था ऐं कंहिं बि बीमारी बाबति तव्हां ॼाण हासिलु करे सघो था।

0: डॉक्टर साहब, हर बार खमीस जुमे छंछर आचार्य सूमर से सुबह 10 का शाम 5 वगे तई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन पोटा पेट्रोल पंप कोटली रोड मेरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा असने प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था। असने लाइव कॉल जो नंबर है 0301-96-8051 0301-2196-851। जी सर, ये जो सर चेकअप फीस होंगी है 3 दिन, यह सर अवजी कंपनी बर्दाश्त कर दिया या
1: जी सर बिल्कुल बुधाई चेकअप फीस फ्री जो सो सर होंगे है जर्मन होम्योपैथिक की तरफा जो है सो पेशेंट्स जरा खास एक रिलीफ हों जो अस मरीजन के पे हिसाब से दींदा अच्छा इन प्रोग्राम के तौर असा पेशेंट्स जो हों उनके होम्योपैथिक दवाओं के इस्तेमाल जो तरीको जो उनके बार बार समझा बुधा बुधाइंदा भी आयो पर खास करके के पेशेंट्स ये हों

0: के सही तरीक़े सां दवा खे इस्तेमालु न कंदा आहिनि या उन्हनि जो तरीक़ेकार जो ख़बर मरीज़नि खे न हूंदो आहे, जंहिंजे करे बि पोइ इहा दवा उनखे जेको आहे सो उन्हनि मरीज़नि खे यानी दवा असर न कंदी आहे जेके इस्तेमालु तरीक़ो सही न हूंदो आहे। यानी हिकिड़ी ॻाल्हि असां जी सही ॻाल्हि
1: हा सर कॉल पे अचे तव्हांजे मौज़ू खे कंटिन्यू कंदासीं, लेकिन हिन खां पहिरीं हिकिड़ी कॉल आहे। अस्सलामु अलैकुम।
2: वालेकुम सलाम।
1: कहिड़े किथां खाधा
2: साईं? नजम अली खास गिरी ॻाल्हायां थो, शहर लाखा रोड खां।
1: छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिबु खां?
2: सर असांजी मामी आहे, हुनखे जेको आहे आवाज़ु माना अचनि था मुख़्तलिफ़ करे वञा, कंहिंमहिल केरु कंहिंमहिल केरु पाणी आवाज़ु। इलाज ॾाढा कराए थो पर सम्झ नथी
1: अचे। अच्छा ठीकु आहे, डॉक्टर साहिबु मूंखे ॿुधाए थो, रेडियो ॿुधो। जी सर।
0: जी साईं बिल्कुलु, इहा बि मूंखे हिकिड़ी खोड़ सारा मसाइल हूंदा आहिनि, कन जा मसाइल हूंदा आहिनि, दिमाग़ जी कमज़ोरी हूंदी आहे, ब्लड प्रेशर हूंदो आहे, उनजे करे बि जेको आहे थींदो आहे। सो अन अधे खे बि इहो ई चवंदुसि त अमा खे रूबरू ॾेखारे वञनि त उहो वधीक बहितरु रहंदो, ॾिसी करे पोइ उनजी दवा जेको आहे सो थी वेंदी। इनशाला ताला अहिड़े क़िस्म जा खोड़ सारा केसिस ईंदा आहिनि जेके अलहमदिल्ला उहे सही थी विया आहिनि। महिरबानी, हलूं था पंहिंजे मौज़ू जी तरफ़। त मां ॻाल्हि पई कई त पेशंट्स घणा जेको आहे सो दवा खे यूटिलाइज़ जेको आहे सो सही न कंदा आहिनि। यानी हिकिड़ो हिकु त जेको आहे सो फिर असांजी दवा खे फ्रिज में नाहे रखणो हूंदो ऐं उन खां पोइ हिन दवा खे जेको आहे सो जेतिरो मक़दार क्वांटिटी ॿुधाई वेंदी आहे, यानी अधु कप पाणीअ में जेको आहे सो ॾह फुड़ा, त ओतिरा ई फुड़ा ॾह फुड़ा ई विधा वेंदा आहिनि ऐं अधु कप पाणी में ई विधा वञनि। घणा अधु गिलास में विझंदा आहिनि त ज़ाहिर आहे त उहा दवा असरात एतिरो न कंदी आहे, या सिर्फ़ु थोरे पाणीअ में जेकॾहिं ऐं घणा वरी ईअं हूंदा आहिनि जो अनलिमिटेड दवा विझी छॾींदा आहिनि, जीअं ॿुधाएसीं 10 फुड़ा हुन विझी छॾिया 40 फुड़ा, त उन सां उनखे जेकी हीअ मां ॻाल्हि कई त दवा जो को साइड इफ़ेक्ट न या को नुक़सानु न हूंदो आहे, पर मिसयूज़ करण सां पोइ दवा जेको आहे सो ज़ाहिरी आहे त यानी ओवरडोज़ वारे तरीक़े सां जेकॾहिं केरु इस्तेमालु दवा कंदो त उनखे इस्तेमालु कंदो त उनखे ज़ाहिरी आहे जेको आहे नुक़सानु थींदो। सो इन जे करे जेको तरीक़ो आहे डोज़ेज आहे उहो उन हिसाब सां जेको आहे सो यानी जेको ॿुधायो वञे, ऐं पाणी हमेशह मां ॿुधाईंदो आहियां त जेको दवा जो रूल आहे त सजर पाणीअ में, नलके जो पाणी हुजे या ताज़ो या मोटर जो पाणी हुजे, उन में बर्फ़ जे पाणीअ में दवा पवण सां बेअसर थी वेंदी आहे, यानी उहो पंहिंजो असर न कंदी आहे। जेकॾहिं के बल्कि मां वटि खोड़ सारा अहिड़ा पेशंट ईंदा आहिनि ऐं असां पुछंदा आहियूं मरीज़नि खां, ईअं सम्झो त 30% पेशंट असां वटि अहिड़ा आहिनि जेके इहे ईअं दवा खे मिसयूज़ कनि था, पोइ जंहिंजे करे मरीज़ खे फ़र्क़ु न पवंदो आहे। ऐं घणा जेको आहे सो खोड़ सारा ॿिया बि जेको आहे सो तरीक़ेकार आहिनि, मिसल हिकिड़ो खाधे पीते खां हमेशह असां मथां दवा चवंदा आहियूं, घणा जेका सो नेराने दवा इस्तेमालु कंदा आहिनि, या जेको आहे सो यकदमि जेको आहे सो वरी मथां स्मोकिंग कंदा आहिनि। कॾहिं बि होम्योपैथिक दवा जेकॾहिं केरु इस्तेमालु करे थो त यकदमि उनखे सिगरेट नोशी नाहे करणी तक़रीबनि 15-20 मिंटनि ताईं। जेकॾहिं केरु सिगरेट पीए थो त वरी जल्दी पीउ जेको आहे सो हुनखे ऐं जल्दी दवा नाहे पीअणी, या सिगरेट पीउ ऐं जल्दी दवा नाहे पीअणी, या दवा पीउ जल्दी सिगरेट नाहे पीअणो, त इहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जेके मरीज़ खे असां उते रूबरू वेही करे सम्झाए पोइ दवा ॾींदा आहियूं, उन जे बावजूद बि जेको आहे सो मरीज़ ग़लती करे ईंदा आहिनि। इन जे करे हिन ऑन एयर प्रोग्राम ते अवां सभिनी ॿुधंदड़नि खे कंहिंखां बि दवा वठो था पर दवा जो तरीक़ेकार इस्तेमालु इहो ई हूंदो आहे, तव्हांखे दवा इन तरीक़े सां इस्तेमालु करणु घुरिजे ऐं हमेशह दवा पी ऐं चङी तरह ढकिड़ो बंदि करणु खपे। ऐं ॿी ॻाल्हि त कहिड़ी बि चाहे मेडिकल जी टेबलेट हुजे या चाहे होम्योपैथिक जी टेबलेट हुजे, उनखे कॾहिं बि हथ ते लाहे ऐं उहा तव्हां वात में न विझंदा, कयो छो जो हथ में घणा जरासीम हूंदा आहिनि, उहा डायरेक्टली तव्हां पते मां यानी डबी मां ज़बान ते रखी ऐं पाणी पी सघो था, या ढकणे ते लाहे करे गोरी ऐं ज़बान ते रखी, त इहो हिकिड़ो यानी तव्हांखे असां सिस्टम्स तरीक़ो ॿुधायोसीं जंहिं सां तव्हांखे जेको आहे सो को नुक़सानु कोन थींदो ऐं वणंदो जेको आहे सो फ़ाइदो थी सघे थो। ऐं हमेशह दवा जॾहिं बि कंहिं बि मेडिकल स्टोर तां किथां बि वठो त उन एक्सपायरी ज़रूरु जेको आहे सो नोट कंदा, छो एक्सपायर मेडिसिन्स बि अव्हांखे नुक़सानु पहुचाए सघे थी। वॾी महिरबानी।
1: सर वक्त जो एहसास आखिर में सर वहां केड़ो रिसर्च के पैगाम देन चाहिए
0: जिसे ऐसा जो वक्त जो एहसास थे लेकिन ऐसा जो दिल चवे थे तो अन्या जो है सो वे जे पेशेंट से गए पर वक्त जो एहसास एहसास वारे की खबर होती है सो इन जे करे उन दोस्तों के इन प्रोग्राम जे तवस सा मशरो यो ही दिंदा हूं त जे को है सो यानी सो सफाई एंड सफी ईमान है हमेशा हैंड वॉश करे जरूर जे को जदे भी तवा मानी खाओ या जॾहिं बि तव्हां पाखाने मथे अचा त अचो चङी तरह ॿ दफ़ा हथ ज़रूरु वॉश कंदा करियो ऐं जॾहिं बि मानी खाओ त हथ साबुण सां धोई करे ऐं पोइ जेको आहे सो खाईंदा कयो ऐं नह ज़रूरु लाहींदा कयो तक़रीबनि 15 ॾींहं 20 ॾींहं जेको आहे सो तव्हांजा नह ज़रूरु छो जो नहनि में जॾहिं मिटीअ जा ज़रात पइजी था वञनि त उन में हज़ारे जरासीम अची वेंदा आहिनि जेके तव्हां खाधो खाओ था उहे तव्हां सां गॾु मुंहं में उन बैक्टेरिया उहे मुंहं में जेको आहे वात में खाधे सां गॾु हलिया वञनि था त उहे अव्हांजे पेट जा जेके बि तव्हां ॾिसो अॼुकल्ह पेट जूं बीमारियूं आहिनि तकलीफ़ूं आहिनि इहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असांजी इन नंढड़ियुनि नंढड़ियुनि ग़लतियुनि जे करे बि जेको आहे टाइम तमामु थोरो आहे सो पछाड़ी में दुआ में ज़रूरु यादि रखिजो वॾी महिरबानी
1: असांजा अॼोके प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जो बि वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी त पहुतो ऐं ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान एहसान अली सियाल खे अल्लाह हाफिज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
1: में गालियां जी बाली लाए नई फ्रेम वर्क ते काम शुरू करे चलियो। बरतानवी मैगज़ीन फाइनेंशियल टाइम्स पंहिंजी रिपोर्ट में जणायो आहे त ओमान ऐं कतर, तेहरान ऐं वॉशिंगटन विच में गालियां जी बाली लाए नई फ्रेम वर्क ते कम करे रहिया आहिनि।
0: आप सुन रहे थे न्यूज़।

0: जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 0302018-00003।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात मजलिस सालगिरह जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
1: कलात ऐं सिबीअ में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयूं कयूं वयूं। कोयटा जे इलाइक़े शाबान में फितना अख़बारे जे चइनि ठिकाननि खे निशानो बणाए 26 ख़ारजनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। मस्तोंग में ऑपरेशन दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 6 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। कलात में बि छापे दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 2 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। दहशतगर्दनि वटां हथ आयल बारूदी मवाद ऐं देसी साख़्ता बम मौक़े ते तबाह कया विया। जारी ऑपरेशन दौरान 72 कलाकनि में मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंगु वधी 48 थी वियो। बलोचिस्तान में 2026 दौरान ऑपरेशन में 1188 खां वधीक दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। वज़ीर आज़म पारां कामयाब कार्रवाइयुनि ते सिक्योरिटी फोर्सिस खे भेटा पेश। नून लीग 28 आइनी तरमीम ते पीपुल्स पार्टीअ खे एतमाद में वठण वारियूं कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। कानून वारे फाकी वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड जी लंडन में सदर आसिफ ज़रदारी सां मुलाक़ात। 28 आइनी तरमीम जी तयार कयल मसवदे ते सदर खे एतमाद में वठण जी कोशिश। सदर आसिफ ज़रदारी सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह फरियाल टालपुर ऐं सैयद नासिर हुसैन शाह खे लंडन सॾाए वरितो। इजलास में 28 आइनी तरमीम बाबति अहम फ़ैसलनि जो इम्कानु।

पीपल्स पार्टी जो खदशा खत्म थियण ताईं वफाकी हुकूमत जो साथ न ॾियण जो ऐलान। पीपल्स पार्टी अॻवान सैयद नवीद कमर पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त हू हुकूमत जा मुकमल इतिहादी त न आहिनि पर हुन जो साथ ॾींदा आहिनि। हुकूमत सम्झे थी त साथ जी ज़रूरत आहे त शिकायतुनि जो बि अज़ालो थियणु घुरिजे। संदन शिकायतूं कश्मीर चूंडनि, जजिस जी मुक़ररी ऐं ॿियनि मामलनि ते आहिनि। पार्टीअ जो फ़ैसिलो आहे त अॻभराई थियण ताईं हुकूमत जो साथ न ॾिनो वेंदो।

0: एमक्यूएम पाकिस्तान अलहदगी पसंद तारीख़ सिंधु देश के नजरिए खिलाफ सिंध असेंबली में ठहराव जमा कराए छो। सिंध असेंबली सेक्रेटरीट में जमा करायल ठहराव में है ऐवान अलहदगी पसंद तहरीकन सिंधु देश के नजरिए के रद्द करण समेत पाकिस्तान की खुदमुख्तियारी इतिहाद इलाकई सालमियत के नुकसान पहुंचाईंदड़ हर एजेंडा की मजम्मत करे तो। ऐवान इन गाल की तोसी करे तो सिंध पाकिस्तान जो एक लाजमी ए फख्र जोगो हिस्सो है। मुखालिफ दुण अगवान अली खुर्शीदी जो चवण हो अज खेन असेंबली में ठहराव पेश कर न दिनों वो स्पीकर दबाव में नजर आयो गुजरे ली ऐवान में मंजूर थे।
1: मेरी तो हर सेंस आज नॉनसेंस हो गई है।

0: मुखालिफ़ धुर सिंध जे विरांगे वारी साज़िश लिकाइण लाइ सिंधु देश जे कूड़नि इल्ज़ामनि जो सहारो वठी रही आहे। सिंध असेंबलीअ में अपोज़िशन जो जवाबी ठहराउ अवाम खे गुमराह करण जी नाकाम कोशिश आहे। सिंधु देश हुजे या जनापुर, पीपल्स पार्टी हर सूरत में मुल्क जो दिफ़ा करणु ॼाणे थी। सूबे वज़ीर नासिर
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109। हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।

Hello. Hello. Okay. मिल्क राइस ब्यूटी शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 94 मेहरापुर।

अच्छा जी, तो और अगर आपने प्रोग्राम में कॉल करनी है हमें, हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03939319667। एक बार हमारा लाइव कॉलिंग नंबर दोबारा नोट कर लीजिएगा, 03939319667 पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं और प्रोडक्ट के हवाले से मजीद जान सकते हैं।

अच्छा जी, कल से परसों से हम आपको मुफ्त के ब्यूटी टिप्स दिए जा रहे हैं। एक और बहुत ही आसान और इजी, जिसमें कोई खर्चा भी नहीं, ऐसा ब्यूटी टिप। इवन हमने जो उससे पहले ब्यूटी टिप्स आपको दिए थे उनमें भी इतना कोई खर्चा नहीं है। अगर खर्चा है तो खुद पे खर्चा करना बनता है। और वो ब्यूटी टिप सुनने के लिए, जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी सोप, एक्ने क्रीम इस्तेमाल के बाद आपने फीडबैक भी देना है। और उसके बाद आज हम आपको जो है कि बहुत सारे टिप्स देंगे ब्यूटी, और स्पेशली एक टिप और है इजीली जो आप सारे कर सकते हैं।

मिल्क राइस की प्रोडक्ट्स आपको जिन मेडिकल जिन जनरल स्टोर से मिलेंगी वो है फैजान जनरल स्टोर मेहराबपुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मेहराबपुर, हाफिज जनरल स्टोर मेहराबपुर और कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर। और इसके अलावा अगर आपने कहीं पे भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवानी है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करेंगे 0300-310-5109। इस पे कॉल करके आपने बात करनी है मलिक जफर इकबाल या एम सिद्दीक साहब से।

वेलकम बैक। जिन दोस्तों ने अभी एफएम ट्यून किया है उनको बताते चलें कि आप सुन रहे हैं मिल्क राइस ब्यूटी शो और मैं हूं आबिद चौहान। सॉन्ग की तरफ जाने से पहले हमने आपको एक रिडल दी थी पहली कि वो कौन सी चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है। वह कड़ी शे आए जेका धोने से गंदी थी वी आए मेरी थी वी आए कोड़ सारा असि टीम जहाँ पैं दोस्त भी परेशान मुख्य नजर अचन पे काफ़ी मुख्य टैक्स अचन पे अड़ी कड़ी शे थी सके थी बिल्कुल अड़ी शे आए जेका धोने से मेरी थी वी।

रिडल बि हलंदी रहंदी, म्यूज़िक बि हलंदो रहंदो, उन सां गॾो गॾु हिकु असां जनरल स्टोर में इज़ाफ़ो करे रहिया आहियूं। जनरल स्टोर अव्हांजे शहर में इज़ाफ़ो थी वियो आहे, अवेलेबिलिटी थी वई आहे प्रोडक्ट जी अव्हांजी बेहद असरार खां पोइ। हींअर जेको आहे त मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहिनि जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर ते बि। ऐं हिन सां गॾो गॾु ऑलरेडी सभ खां पहिरियां जिन जनरल स्टोर ते असांजी प्रोडक्ट अॻु में ई मौजूदु आहे उन्हनि में शामिल आहिनि फैज़ान जनरल स्टोर मेहराबपुर, कामरान मोगल जनरल स्टोर मेहराबपुर, हफीज़ जनरल स्टोर मेहराबपुर, कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर ऐं जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर।

ऐं अञा बि हिन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां किथे बि अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट जी कराइण चाहियो था त डेफिनेटली अव्हां खे हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करणी पवंदी, ऐं असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-5109। हिन ते कॉल करे अव्हां मलिक ज़फ़र इक़बाल साहब ऐं एम सिद्दीक साहब सां ॻाल्हि ॿोल करे प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी ऐं प्रोडक्ट जे बारे में वधीक ॼाण हासिल करे सघो था।

जी ब्यूटी टिप्स में जेके अवां जे चेहरे ते निखार आणींदियूं आहिनि उन्हनि शयुनि में ऑलरेडी असां अॻु में अव्हां खे ॿुधाए चुका आहियूं त निंड हूअं बि सिहत लाइ बि तमामु बहितरु आहे। निंड कंप्लीट करणु लाज़मी आहे। निंड सां गॾो गॾु अव्हां खे असां इहो बि ॿुधायोसीं त फ्रूट सब्ज़ियूं फल फ्रूट मेवा इहे पिणु खाइबा, उन सां गॾो गॾु खीर जो इस्तेमालु बि चेहरे ते रौनक आणींदो आहे। ऐं अॼोकी टिप तमामु ई बिल्कुलु बिना ख़र्च वारी, बिना ख़र्च त हर कोई इस्तेमालु कंदो, पर उन सां गॾो गॾु अव्हांखे जेको आहे मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम ऐं ब्यूटी सोप ऐं एक्नी क्रीम जो इस्तेमालु करिणो लाज़मी पवंदो, छो त ख़ूबसूरती जो नज़र आहे भरोसा जो दिलि जीत ले। और हम दावा नही दलील देते हैं, केतिरियूं दलीलूं ॾींदासीं, अव्हां सिर्फ़ु मौक़ो ॾियो असांखे, असांजी प्रोडक्ट आज़मायो, आज़माइण शर्त आहे, उनखां पोइ असां अव्हांखे दलील ॾींदासीं त असांजी प्रोडक्ट केतिरी असरंदा।

ऐं असां सां ॻाल्हि ॿोल करण लाइ अव्हां असांजे लाइव कॉलिंग नंबर ते कॉल करे असांखे प्रोडक्ट जे बारे में बि ॼाण हासिल करे सघो था। ऐं रिडल मूं अव्हां खे ॿुधाई गुज़ारत त उहा कहिड़ी शइ आहे जेका धोइण सां गंदी थी वेंदी आहे, मेरी थी वेंदी आहे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है।

अवा रिडल जो रिप्लाई असांखे टैक्स वसीले बि करे सघो था, पर असांखे अवां जी कॉल जो इंतज़ारु रहंदो। असांजो कॉलिंग नंबर आहे 03939316।

जी त पोइ अॼोकी टिप आहे ॿुधाए छॾियूं। अॼोकी टिप आहे बिल्कुलु ही मुफ़्त जी, मशवरे सां गॾो गॾु उहा टिप में बि को ख़र्चो न आहे। उहो आहे पाणीअ जो इस्तेमालु, साफ़ु सुथिरो पाणी। अव्हां खे पाणी त ॻोठनि में ऑलरेडी या भर पासे वारे शहरनि में, ज़मीननि में, ॿनिनि में, कुझु शहरनि जे विच में जेको आहे त पाणी खारो बि हूंदो आहे, पर पाणी मिठो, वध में वधि पाणीअ जो इस्तेमालु, पाणी मोधण सां गॾो गॾु पाणी पीअण लाइ इस्तेमालु करण में, उन ते बि चहिरे ते ग्लो ईंदी आहे। पर डेफिनेटली अव्हांखे यादि हुअणु घुरिजे त अव्हांखे ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी सोप ऐं एक्नी क्रीम, मिल्क राइस जी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु लाज़मी करणी आहे।

अच्छा जी, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, और ट्रैक है बहुत ही सुपर डुपर, हमारे बहुत ही प्यारे हरदिल अजीज सिंगर असरार का।

जी तो मिल्क राइस की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेहराबपुर के इन जनरल स्टोर पे, फैजान जनरल स्टोर मेहराबपुर, कामरान जनरल स्टोर मेहराबपुर, हफीज जनरल स्टोर मेहराबपुर, कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर और जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर। और इसके अलावा आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवा सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0300 310 5109। इस पे कॉल करके आपने

प्यार जो कंहिंसां पेच मां पाए वेठो आहे, पत्थर जे बुत खां आस लॻाए वेठो आहे। प्यार जो कंहिंसां पेच मां पाए वेठो आहे, पत्थर जे बुत खां आस लॻाए वेठो आहे। हू छा ॼाणे वाइदा कसमूं रीतूं रस्मूं, हू छा ॼाणे वाइदा कसमूं रीतूं रस्मूं, मां जंहिंजी ख़ातिर पाण भुलाए वेठो आहे। प्यार जो कंहिंसां पेच मां पाए वेठो आहे।

झुड़ियालीअ में याद सारियूं अची वयूं, झुड़ियालीअ में याद सारियूं अची वयूं, तो मूं जे कयूं से ॻाल्हियूं मिठियूं मिठियूं, रिमझिम हुई बरसात खिमणियूं बि पए खिमियूं, तो मूं जे कयूं से ॻाल्हियूं मिठियूं मिठियूं, तोहें त ॼण ख़िज़ा में बि मौसम बहार हुई, हर पासे प्यार जी पिरी प्यारा पुकार हुई, सखियूं पींघुन में गाए थे पए लुॾियूं, तो मूं जे कयूं से ॻाल्हियूं मिठियूं मिठियूं, मूं तुंहिंजो नाओं हो लिखियो, तो मुंहिंजो नाओं हो, साॻे ई वण ते आ मिठा अॼु बि लिखियलु उहो, छो यादूं दिलि तां तो मेटे छॾियूं, तो मूं जे कयूं से ॻाल्हियूं मिठियूं मिठियूं, दर्जी विथुनि मां यादि कर हर हर मूरे ॾिसण, दर्जी विथुनि मां यादि कर हर हर मूरे ॾिसण, चाहत सां ॾिसी चपन में ई खिली पवण, आबिद आहिनि यादि घारियल सभई घड़ियूं, तो मूं जे कयूं से ॻाल्हियूं मिठियूं मिठियूं, रिमझिम हुई बरसाति खिमणियूं बि पए खिमियूं, तो मूं जे कयूं से ॻाल्हियूं मिठियूं मिठियूं।

जी त दोस्तों मिल्क राइस जो प्रोडक्ट्स असां जो अवेलेबल आहिनि फैज़ान जनरल स्टोर मेहराबपुर, कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मेहराबपुर, हफीज़ जनरल स्टोर मेहराबपुर, कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर ऐं जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर। इन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी पंहिंजे वेझे कंहिं स्टोर ते चाहियो था त उन लाइ अव्हांखे असांजो हेल्पलाइन नंबर मिलाइणो पवंदो। असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-5109। इन ते कॉल करे अव्हांखे ॻाल्हि करणी पवंदी मलिक ज़फ़र इक़बाल साहिब सां ऐं एम सिद्दीक़ साहिब सां।

जादूगर सुहिणा तुझी अखियुनि में जादू आ, दिल मुझी धोखे सां कई तो तक काबू आ। जादूगर सुहिणा तुझी अखियुनि में जादू आ, दिल मुझी धोखे सां कई तो तक काबू आ। हिंद सिंध सुहिणा तुझे हुसन जी हाका, सूरत अहिड़ी सुहिणी ठाही रब पाका। नरुगो सखर या शिकारपुर खैरपुर, मोरो ऐं नवाबशाह दीवानो सॼो दादू आ। जादूगर सुहिणा तुंहिंजी अखियुनि में जादू आहे।

GFM 94 ऐं आवाम ॿुधी रहिया आहियो मिल्क राइस ब्यूटी शो। अवां सभिनी सरणनि जे नाओ शमर अली मीरालीअ जी ख़ूबसूरत आवाज़ में ही ख़ूबसूरत ट्रैक, लेट्स एंजॉय द ट्रैक।

वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइस जी ब्यूटी शो सां गॾु आउं आहियां आबिद चौहान ऐं आवां ॿुधी रहिया आहियो जी एफ एम 94 मैरापुर जी दोस्तों अवां जा खोड़ सारा टेक्स्ट मैसेजेस मौसूल थी रहिया आहिनि जंहिंजो बि राइट आंसर हूंदो हो असां प्रोग्राम जे आख़िर में फॉर्मेट मुताबिक़ ॿुधाईंदासीं अॼोकी गुजारत आहे उहा कहिड़ी शइ आहे जेका धोइण सां मैरी थी वेंदी आहे

0: अच्छा जी, प्रोग्राम में कॉल भी अचे असा कॉल शामिल कंदासे। अस्सलाम वालेकुम, केयर साईं किथां खां? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, केयर साईं किथां खां? अवां जो आवाज़ तमाम घट पियो अचे जी। काइंडली एक भेरो बीहर रिपीट कजो। हेलो,
1: हेलो
0: जी जी जी, हाँ वाजे हैं, क्लियर पे अचे आवाज़। केर साईं किथां खां?

जी त हुसैन बख्सियाल साहब जो रिप्लाई हुयो उहो अवां ॿुधो ऐं अवां जा कुझु टेक्स्ट मैसेज बि आयल आहिनि जिन जिन दोस्तनि जो जेको रिप्लाई आहे असां आख़िर में हुनजो राइट आंसर ॾींदासीं अवां ॿुधी वठंदो त गुज़ारत कंहिं भगी कंहिं कंहिं भगी हा खोड़ सारा बि वञी सघंदा उन ॻाल्हि खे असां ॿुधण खां पोइ डिस्क्लोज कोन था कयूं। लास्ट असांजो टाइम बचियो बि आहे 6 मिंट लॻभॻि, असां हिकिड़ो अवां लाइ ख़ूबसूरत ट्रैक बि प्ले कंदासीं। यादि रहे तव्हां प्रोग्राम ॿुधी रहिया हो मिल्क राइस ब्यूटी शो, ऐं असांजी ब्यूटी जूं ख़ूबसूरत प्रोडक्ट्स आहिनि ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी सोप, एक्नी क्रीम। खूबसूरती जो नज़र आए, भरोसा जो दिल जीत ले, और हम दावा नहीं दलील देते हैं। असांजो प्रोडक्ट अवेलेबल आहिनि फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर। इन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां पंहिंजे कंहिं जनरल स्टोर ते प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी कराइणु चाहियो था त उन लाइ अव्हांखे असांजी हेल्पलाइन ते कॉल करणी पवंदी। असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-5109, ऐं असांजो लाइव कॉलिंग नंबर, असां कॉल्स अटेंड कयोसीं। हींअर प्रोग्राम जो वक़्तु लॻभॻि पंहिंजी पुराणी ते पहुतो आहे, सो असां अव्हां सरणनि लाइ आख़िरी ट्रैक प्ले कंदासीं। पर ट्रैक प्ले करण खां पहिरियों अव्हांखे रिडल यानी कि गुज़ारो जो इंतज़ारु हूंदो। जी हा बिल्कुलु, जिन दोस्तनि इहो रिप्लाई ॾिनो आहे त धोइण सां उहा कहिड़ी शइ आहे जेका मैरी थी वेंदी आहे, बिल्कुलु दोस्तो, धोइण सां फ़क़ति पाणी मेरो थींदो आहे, छाकाणि त जंहिं बि शइ ते इस्तेमालु कंदासीं त पाणी मेरो थी वेंदो, बाक़ी उहा शइ साफ़ थी वेंदी। वो चीज़ पाणी है जो धोने से मैला हो जाता है, छाकाणि त पाणी सां का बि शइ धोईंदासीं उहो पाण मेरो थी वेंदो पर ॿिए खे चमकाए छॾींदो। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो, ऐं हीउ लास्ट में म्यूज़िक ट्रैक अवां महबूबनि जे नाव मूंखे ॾींदा। इजाज़त, सिंध सलामत, साथ सलामत, अलाह निगेबान।

0: बच्चे तो कोई भी ग्लास उठा सकते हैं क्योंकि दोनों दिखने में एक जैसे।
1: पाकिस्तान जो एक लाज़मी ऐं फ़ख़्र जोॻो हिसो आहे। मुख़ालिफ़ तुर अॻवान अली ख़ुर्शीदी जो चवणु आहे त अॼु खेनि असेंबली में ठहराउ पेश करण न ॾिनो वियो। स्पीकर दॿाउ में नज़र आयो। गुज़िरियल ॾींहुं बि ऐवान मां मंज़ूर थियल ठहराउ में मुख़ालिफ़ धुर जूं गुज़ारिशूं शामिल न कयूं वयूं।
2: मुख़ालिफ़ धुर सिंध जे विरहाङे वारी साज़िश लिकाइण लाइ सिंधु देश जे कूड़नि इल्ज़ामनि जो सहारो वठी रही आहे। सिंध असेंबलीअ में अपोज़िशन जो जवाबी ठहराउ अवाम खे गुमराह करण जी नाकाम कोशिश आहे। सिंधु देश हुजे या जनाहपुर, पीपल्स पार्टी हर सूरत में मुल्क जो दिफ़ा करणु ॼाणे थी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह अली ख़ुर्शीदीअ जी सिंधु देश जे बयानीअ खे रद्द करे छॾियो। नासिर शाह चयो त सिंध असेंबलीअ जो कालोको ॾींहुं तारीख़ी हो। धरतीअ जे विरहाङे वारियूं साज़िशूं नाकाम बणायूं वयूं। एम क्यू एम इजलास जो बाइकाट करे इहो साबित कयो त उहा सिंध दुश्मन साज़िशनि जो हिसो आहे। पी टी आई ऐं जमात इस्लामी बि ठहराउ जे वक़्तु गैर हाज़िर रही सिंध दुश्मनीअ जो सबूत ॾिनो।
3: सिंध असेंबली जे ऐवान में हुया, हुन मां सिंध लफ़्ज़ गायब हुयो। छा सबबु आहे हुन जो?
4: सबबु इहो आहे त हिकिड़ी टेक्निकल मिस्टेक थी सघे थी। बाक़ी हाणे सिंध जेके असांजी धरती आहे उहा सिंध आहे। जेके एम क्यू एम सां तालुक रखनि था, तंज कंदा, उन्हनि बि चयो त सिंध धरती मां हो।
5: न उहो को अगरि कंहिं लिखियो हुजे पंहिंजी तरफ़ां त ख़बर न आहे। बाक़ी सभु हिकु जहिड़े ई हुआ। सभु त इहो असेंबली लिखियो।
3: छा दॿाउ हुयो छा तव्हां ते?
6: असां बीठा किथे आहियासीं? कहिड़ी असेंबली? सिंध जो हिकु आहे, हिकु रहंदी।
3: लिखियोसीं न, असां त रत सां बि लिखंदासीं।
7: इहो कुझु कोन आहे, अजरक जो निशानो। अजरक ई निशान ई सिंध
3: आहे। धरती कहिड़ी आहे साईं? हर शइ में साज़िश आहे, लेकिन असांखे दबाव हुजे हा, ऐं असां दबाव बर्दाश्त या दबाव में कॾहिं अहिड़ा हुजो त रेज़ोल्यूशन पास कयूं। धरती माउ जो मतिलबु इहो ई आहे। मुंहिंजी सिंध आहे न, पोयां अजरक हुई न। अजरक छा आहे? अजरक छा खे कंहिंजी निमाइंदी करे? सिंध जी करे थी न। दबाव हुयो छा भला? सिंध जो नालो लिखण ते दबाव हुयो? कहिड़ी ॻाल्हि हुजे आहे त एॾो डिस्कशन कोन थिए हा।
8: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम बहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आहिन
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 0242460100
3: खुश खबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300338569

0: कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000-27234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।
3: आगाज शेख आयाज सिस्टम से कहया तो वधिक तो जी जका फरमाइश वसार कोशिश कभी तो पूरी कर जो।

चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ रही न दूर तड़पायो दिल जी गाल करनी आ चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ रही न दूर तड़पायो दिल जी गाल करनी आ रही दुनिया में ना है सा मोहब्बत ऐ सचाई लबन ते मुर्का विखरिल दिल में आबे आई चाहत जा चंग वजायो दिल जी गाल करनी आ चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ कराची हां कश्मीर की जरगा कारूं जरताई सोहणी सिंधवासिन के आबिद चौहान जो सिक भरियो सलाम कबूल पवे प्रोग्राम दिल जी गाल सां गद आऊं आया आबिद चौहान ऐं अवां बुधी रहया हो जीएएफएम 88 नेटवर्क।

GFM88 Network जे बुधंदड़न आई दिल जी गाल जे बुधंदड़न सबनी मानवारन महबूब दोस्तन साथन परिन प्यारन के वेलकम भलीकार खुशामदी मुझो आई अभाजो साथ रंदो हियर खां 11 वगे ताई आई खोड़ सारी कबियू अवासा दिल जी गालियां

तुमां आहीं बई हरजाई बई सैलानी बई सौदाई तुमां आहीं बई हरजाई बई सैलानी बई सौदाई बेगाना बेजार उचंड तू मां आहीं यार उचंड रूह न रीझे तुझो मुझो पंध पिरह दे तुझो मुझो रूह न रीझे तुझो मुझो पंध पिरह दे तुझो मुझो पिरी पराहे पार उचंड तू मां आहीं यार उचंड

साॻे नंबर ते यानी 03-000-11-34-88 ते व्हाट्सएप पैगाम पिणु मोकिले सघो था। पर इहो यादि रहे त व्हाट्सएप पैगाम शॉर्ट यानी मुख़्तसिर हुजे।

तबीयत बेवफा किथा आणियूं, तबीयत बेवफा किथा आणियूं, नई दिल दिलरुबा किथा आणियूं।

तबीयत बेवफा किथा आणी नई दिल दिलरुबा किथा आणी असा कोशिश कई खुटी किस्मत असा कोशिश कई खुटी किस्मत दवा

सायण और दपड़ियन जी आवाज में तमाम खूबसूरत ट्रैक सजी सिंध वारन जे नाव नई आहे नित नाज वारन जी बोली निगाहुन अदाउन इशारन

0: अवां बुधी रहा हो प्रोग्राम दिल जी गाल आया हूं आया अब चौहान हिन वक्त थियो आहे हिकड़े नंढड़े ब्रेक जो ब्रेक खां पो अवां जो कॉल्स भी अटेंड कंदासे ऐं अवां सां कंदासे खोड़ सारियूं दिल जूं ॻाल्हियूं त पोइ ॿुधंदा रहो GAFM 88 नेटवर्क
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
2: फातिहे मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: जिए
3: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
4: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे
5: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा
6: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी

0: ॿारनि में कद जो न वधणु, मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधणु, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8051।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
3: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
2: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी,
5: 0301-399-2836।
6: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: जेकॾहिं झूंगारे ॿुधाईंदो त मज़ो अची वेंदो प्रोग्राम में। दोस्तनि जो को पैगाम, को प्यार जो का ॻाल्हि
1: पैगाम इहो ई आहे त प्यार ऐं मोहबत सां रहो, मोहबत में मज़ो आहे।
0: वाह वाह।
1: नफ़रत कोन्हे, नफ़रत मना मोहबत में मिठाण।
0: क्या बात है सर।
1: मोहबत सां रहो ऐं प्रोग्राम तव्हांजो ज़बरदस्त आहे सर। ट्राए करे करे फोन खणो खणो ई कोन था।
0: असां हथ बधी मादरत खां आहियूं। असांजो हिकिड़ो पैटर्न आहे, तरीक़ेकार आहे त पहिरीं ब्रेक ताईं असां कॉल अटेंड कोन था पिया कयूं। अवां सां ॻाल्हि बि त कयूं न। सभिनी जेके दोस्त असांखे ॿुधी रहिया आहिनि उन्हनि सां कचहरी करे ॻाल्हि ॿोल करे असां पहिरीं ब्रेक खां पोइ कमिटमेंट कईसीं त कॉल अटेंड कंदासीं। कॉल अटेंड थी वई। प्रोग्राम राइट 9 वॻे स्टार्ट थींदो आहे, 9 वॼी 10 खां 15 मिंटनि ताईं। उन खां पोइ ब्रेक ईंदी आहे जॾहिं 9:30, उन खां पोइ असां कॉल अटेंड कंदाऊं।
1: कहिड़े
0: शहर इलाइक़े खां?
1: सर, मोरो खां, त्रिमूर स्टाफ।
0: मोरो खां, ठीकु आहे। मुंहिंजे साईं प्रोग्राम जो टाइम अवां लाइ 2 कलाक ई हूंदो आहे पूरो।
1: सर, उहो त आहे, अञा वधाए बहितरीन थींदो छो जो असांजी जेका मोरो ट्रांसमिशन आहे।
0: जेकॾहिं वधायूं त पोइ मां राति जी मानी त कोन थो खाई अचां, पोइ सुबुह जो नेरन बि हितां करे निकिरां। लव यू, सलामत हुजो, शाद हुजो, आबाद हुजो। ॿुधंदा रहो GFM 88 नेटवर्क।

0: अवां जो मोहब्बतूं अवां जो मान इहो प्यार असां हिकिड़ो ॿियो कॉलर असां सां गॾु लाइन ते आहे कॉल अटेंड कंदासीं अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां कुर्बान अली ख़ास खेली साहब कहिड़े ॻोठ खां साईं मुंहिंजा वेलकम भली कार ख़ुश आमदीद प्रोग्राम में वाह वाह ऐं असांखे मज़ो वरी अव्हां जी कॉल सां अचे पियो मुंहिंजो असांजो मज़ो वरी अव्हां जी कॉल सां वधी वञे थो अव्हां जूं फोन कॉल्स अचनि थियूं हा हा हा हा क्या बात आहे दिलि जी ॻाल्हि जेको आहे त डिपेंड जेको आहे त उहो करे थो दारो मदार शायरीअ ते ऐं शायरीअ खां वधीक आसानीअ सां दिलि जी ॻाल्हि थींदी बि न आहे जी क्या
1: हा असांजूं करण जी छॾे ॾिनो अवां वफ़ाऊं फेरे छॾियोसीं पंहिंजो निगाहूं असांजूं करण जी छॾे ॾिनो अवां वफ़ाऊं फेरे छॾियोसीं पंहिंजो निगाहूं असांजूं अवां वटि फिकर कोन्हे त अवां जो असां वटि फिकर कोन्हे तोखा सोणा सरे खे सरे पई ज़िंदगी यार भली गुज़रे पई गुज़रे पई तोखा सोणा दुनिया में अञा मथे पिया थियूं नाज़ न करा छो पिया थी फेरे छॾियो न पंहिंजो राहूं
0: यार कुझु को मोहबत में को परचाइण जी का ॻाल्हि बि कबी आहे तव्हां त सफ़ा ईअं चई छॾियो त बसि पोइ जवाब थी मुंहिंजो बि ईअं
1: मोहबत आहे पर
0: कंहिंजी दिल आज़ारी न कजे या एतिरो बि रुसजे न जो परचाइण वारो ई रुसी पवे वाह वाह ज़बरदस्त को प्यार जो पैगाम को दोस्तनि जा को नाव को न्यापो क्या बात आहे तमामु क़ीमती अमुल ॻाल्हि कई आहे मां वरी मां को दोस्तनि जा नाला शामिल करणु चाहींदो जी फौज़िया सुमरो जो सुठो कलाम ॿुधाईंदासीं बिल्कुलु पहिरां वॾी महिरबानी प्रोग्राम में कॉल करण लाइ जी
1: वालेकुम
0: थैंक यू वेरी महिरबानी पहिरां लव यू लक लाइक

0: जी दोस्तों, इहो मां जो मान मोहब्बतूं प्यार आहे जो असां खे हिते एफएम 88 ते आंदो आहे ऐं अवां सां गॾु दिलि जी ॻाल्हि करे रहिया आहियूं। अवां बि पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि असां सां करे सघो था। कॉलर असां सां गॾु लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां?
1: वालेकुम अस्सलाम साईं।
0: केर पैरा किथां खां?
1: साईं मां शहर हलीगुल मिरानी मैक्रो टावर सखर वन।
0: मैक्रो टावर खां सखर खां?
1: जी।
0: नालो छा ॿुधायो पंहिंजो पैरा?
1: जी साईं,
0: नालो छा ॿुधायो मां पंहिंजो?
1: शहर हलीगुल मिरानी मैक्रो टावर।
0: शायर हलीगुल मिरानी, मतलब अवां शायर आहियो? बाबर ना है, बाबर जो खादिम आहियां, आबिद चौहान। क्या बात आ, बिल्कुल बाबर तमामु मोहबती माण्हू आहे। अवां सां ॻाल्हि ॿोल करे मूंखे ख़ुशी थी रही आहे। अवां पंहिंजो तारीफ़ करायो आहे शायर जी हैसियत सां, त पोइ भला ख़ुदा जे ॾिने मां कुझु थी वञे। मुंहिंजी दिलि बि चए थी त अवां लाइ हिकिड़ो शेर अवां खे ॿुधाए छॾियां थी। अर्ज़ु कयो अथमि त मुंहिंजी दिलि जी पार्लियामेंट जो मेंबर तूं सुहिणा, मुंहिंजी दिलि जी पार्लियामेंट जो मेंबर तूं सुहिणा, ही इश्क हुकूमत आहे मिनिस्टर तूं सुहिणा, तूं प्यार जी पोलिंग, तुंहिंजी सूंह खे वोटिंग, ही दिलड़ी आहे सेनेट सेनेटर तूं सुहिणा। लव यू सर, इहो शेर स्पेशली अवां लाइ हुयो। पहिरां को पैगाम को प्रोग्राम में को दोस्तनि खे
1: इंसान कम खे पंहिंजो भलो करे, पंहिंजे कम खे नमाज़ पढ़े, अलाह ज़िक्र करे, हिकु ॿिए जे कम खे।
0: वॾी महिरबानी साईं, वॾी महिरबानी। अव्हां जो पैगाम बाबर ताईं पहुची वेंदो।
1: ठीकु आहे, ठीकु
0: आहे। वालेकुम सलाम, वॾी महिरबानी। लव यू, लख लाख क़ुर्ब।

0: जी दोस्तों वक्त थो है नंढड़ी ब्रेक जो ब्रेक का कंटिन्यू कॉलिंग अटेंड करने जो सिलसिलो जारी रहो बुधा रहो GFM 88 नेटवर्क
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
2: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: छा तो आज ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ

0: एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: ਚਾਹੀਂ ਦੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਾ
1: ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਚੰਦਸਤ ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਤੀ ਇਨ ਗਿਆਨ ਮੇ ਆਇਆ ਹੂੰ ਇਤੀ ਆਜ਼ਮਾ ਚਲਾਇਆ ਆਇਆ ਹੂੰ
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੁੱਕ ਆਏ ਮਾਣਾ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰੇ
0: ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਥਿਆਣ ਗੁਰਜੇ
1: ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਗੁਰਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਂ ਪਾਂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਾਇ ਇਤੀ ਸੁੱਖੀ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂ
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: हाँ जैसे अस मुल्क में अमन हों तरक्की तदे थी असाजी गरीब आवाम आने लो वक्त खुशहाल इन गुजर जैसे अमन हों अमन हों हर कोई खुश गुजारे मुल्क तरक्की भी कर
0: तमाम असर आए तो वक्त आए तो पैगाम जबरदस्त प्यारा
1: हाँ छो अस पाकिस्तानी आये अलहमदुल्ला असे पाकिस्तान का मोहब्बत क्यों भलो
0: हो लाजवाब साईं को दोस्तन जा नाम खणो जी जी
1: सर एकड़ो असा के भेट मिलाया सी
0: जी क्या
1: जेडो से जो नाम बाजी भी हो जाई
0: बाजी भी हो जाई मंगा रे थोणी रे थंभे तू ही छपर छा जेडो
1: से जो नाम बाजी हो जाई मंगा री थंभे री थोणी तू छपर पूछा
0: कुजारो
1: कहां तुखे
0: मालूम सब की वाह साईं वाह वाह लाजवाब
1: जी सर
0: बड़ी मेहरबानी जी जी क्या
1: थैंक यू सर अल्लाह से तांके अगला दिन तो आई दादा सुख प्रोग्राम से क्या एंड नवा भी संगत में आपके जो दोस्त बुदन क्या उनके जो इजाजत से सलाम दियो
0: जी जी
1: हां बिल्कुल से हम प्रोग्राम नायाब किलर बुदे को लेके सलाम मुनीर में ख्याल से सलाम आई मंजूर से सरपोट के सलाम है देखिए मुझे तो बाहर बुदन का उनके
0: साईं मुझा भी हमारी सजी संगत के सलाम बड़ी मेहरबानी प्यारा प्रोग्राम में कॉल करना मोहब्बतों कुर्बान थैंक यू लख लाख।

0: वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गाल संगत आऊं आया अब चोण आया वहां बुधी रहा हो जी एफएम नेटवर्क ब्रेक पे वनन का अग में इकडे कॉलर तमाम खूबसूरत पैगाम दिलो त अमन अमान कान थे मोहब्बतों विरहजन ऐ रब के परचा जे ऐ रब इनन गालिन में राजी थे तो रब चवे तो त मुझे बंदन ते रहम कयो आऊं आवां ते रहम कंदुस बिल्कुल अमन ऐ मोहब्बतों कायम होजन सिंध में प्यार होजे सदाई वक्त थियो आहे न्यूज जो न्यूज का पो एकड़ो नंढड़ो कमर्शियल ब्रेक आए वरी वापस वरंदासे आए अवाज कॉल्स भी अटेंड कंदासे आए ट्रैक भी प्ले कंदासे उधंदा रहो प्रोग्राम दिल जी गाल जी एफ एम नेटवर्क पे
1: मोरो नौ शहरो मीरपुर खास लाड़काना सक्खर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज जीए एफएम 88 नेटवर्क
2: देंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: आईनी तरमीम ते पीपल्स पार्टी के एतमाद में वठण वाली कोशिशों तेज करे छड़ियूं कानून वारे वफाकी वजीर सेनेटर आजम नजीर तारड़ जी लंडन में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात 28 आईनी तरमीम जे तैयार कयल मुसवदे ते सदर आसिफ अली जरदारी के एतमाद में वठण जी कोशिश सदर आसिफ अली जरदारी सिंध जे वडे वजीर मुहम्मद अली शाह फरियाल टालपुर ए सैयद नासिर शाह के लंडन सदाए वरतो इजलास में 28 आईनी तरमीम बाबत अहम फैसलन जो इम्कान पीपल्स पार्टी जो खदशा खत्म थियण ताईं वफाकी हुकूमत जो साथ न ॾियण जो ऐलान पीपल्स पार्टी अगवान सैयद नवीद कमर पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त हू हुकूमत जा मुकमल इतिहादी त न आहिनि पर हुन जो साथ ॾींदा आहिनि हुकूमत सम्झे थी त साथ जी ज़रूरत आहे त शिकायतुनि जो अज़ालो बि थियणु घुरिजे संदनि शिकायतूं कश्मीर चूंडनि जजिस जी मुक़ररी ऐं ॿियनि मामलनि ते आहिनि पार्टी जो फ़ैसिलो आहे त अॻुभराई थियण ताईं हुकूमत जो साथ न ॾिनो वेंदो एमकेएम पाकिस्तान अलहदगी पसंद तहरीकन ऐं सिंधु देश जे नज़रिये ख़िलाफ़ सिंध असेंबली में ठहराउ जमा कराए छॾियो सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करायल ठहराउ में चयो वियो आहे त ऐवान अलहदगी पसंद तहरीकन ऐं सिंधु देश जे नज़रिये खे रद्द करण समेत पाकिस्तान जी ख़ुदि मुख़्तारी इतिहाद ऐं इलाक़ाई सालमियत खे नुक़सान पहुचाईंदड़ हर एजेंडा जी मज़म्मत करे थो ऐवान इन ॻाल्हि जी तौसीक़ करे थो त सिंध पाकिस्तान जो हिकु लाज़मी ऐं फ़ख़्रु जोॻो हिसो आहे मुख़ालिफ़ धुर अॻवान अली ख़ुर्शीद जो चवणु आहे त अॼु खेनि असेंबली में ठहराउ पेश करणु न ॾिनो वियो स्पीकर दॿाउ में नज़र आयो गुज़िरियल ॾींहुं बि ऐवान मां मंज़ूरु थियल ठहराउ में मुख़ालिफ़ धुर जूं गुज़ारिशूं शामिलु न कयूं वयूं

0: मुखालिफ़ धुर सिंध जे विरहाङे वारी साज़िश लिकाइण लाइ सिंधु देश जे कूड़नि इल्ज़ामनि जो सहारो वठी रही आहे। सिंध असेंबलीअ में अपोज़िशन जो जवाबी ठहराउ अवाम खे गुमराह करण जी नाकाम कोशिश आहे। सिंधु देश हुजे या जनापुर, पीपल्स पार्टी हर सूरत में मुल्क जो दिफ़ा करणु ॼाणे थी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह अली खुर्शीदीअ जी सिंधु देश जे बयानीअ खे रद्द करे छॾियो। नासिर शाह चयो त सिंध असेंबलीअ जो कालोको ॾींहुं तारीख़ी हो, धरती जे विरहाङे वारियूं साज़िशूं नाकाम बणायूं वयूं। एम क्यूएम इजलास जो बाइकआउट करे साबित कयो त उहा सिंध दुश्मन साज़िश जो हिसो आहे। पीटीआई ऐं जमात इस्लामी बे ठहराउ जे वक़्तु गैर हाज़िर रही सिंध दुश्मनीअ जो सबूत ॾिनो।
1: सिंध असेंबली जे ऐवान में हुया, हुन मां सिंध लफ़्ज़ गायब हुयो। छा सबबु आहे हुनजो?
2: सबबु इहो आहे त हिकिड़ी टेक्निकल मिस्टेक थी सघे थी। बाक़ी हाणे सिंध जेके असांजी धरती आहे उहा सिंध आहे, जेके एम क्यू एम सां तालुक रखनि था, तंज कंदा, उन्हनि बि चयो त सिंध धरती मां सिंध आहे, जेके एम क्यू एम सां तालुक रखनि था, तंज कंदा, उन्हनि बि चयो त सिंध धरती मां
3: उहो को अगरि कंहिं लिखियो हुजे पंहिंजी तरफ़ा त ख़बर न आहे। बाक़ी सभु हिकु जहिड़े ई हुआ, सभु त इहो सेम लिखियो।
1: छा दॿाउ हुयो छा तव्हां ते?
4: असां बीठा किथे आयासीं? कहिड़ी असेंबली? सिंध हिकु आहे, हिकु रहंदी।
1: लिखियोसीं न, असां त रत सां बि लिखंदासीं सिंध।
5: इहो कुझु कोन आहे, अजरक जो निशानो, अजरक ई निशान ई सिंध
1: आहे। धरती कहिड़ी आहे असांजी? हर शइ में साज़िश न आहे, लेकिन असांखे दॿाउ हुजे हा, ऐं असां दॿाउ बर्दाश्त या दॿाउ मकड़ जहिड़ा हुजो त रेज़ोल्यूशन पास कयूं। धरती माउ जो मतिलबु इहो ई आहे, मुंहिंजी सिंधु आहे न, पोयां अजरक।
6: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
7: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।